मिली वेव 396.2 आर्द मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान।

0: अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ माँ भारती की आराधना के साथ समूह स्वर में। हमारा भारत देश सबसे महान, हमारा हिंदुस्तान सबसे महान। आइए हम भी इस माँ भारती की वंदना में स्तुति समूह स्वर में करते हैं इस गीत के साथ।

भोर की इस वेला में माँ भारती की आराधना के बाद आइए हम स्तुति करें उस प्रभु परमेश्वर की जो इस सृष्टि का रचनहार

एक भक्त जब अपना सब कुछ अर्पित करता है उस भगवान को, उसकी शरण में चला जाता है, तब अगर उस भक्त को दर्शन में देर हो जाए तो उसके स्वर कुछ ऐसे निकलते हैं। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना लता मंगेशकर और समूह स्वर में।

जब प्रेम की बात हो और अगर वो प्रेम भक्त और भगवंत के बीच की है, तब उस प्रेम की सबसे बड़ी ताकत होती है और वही प्रेम इस रचना का आधार भी तो है। आइए सुनते हैं रिविता श्रीवास्तव और मृदुला चटर्जी के स्वर में ये भजन।

0: श्रोताओं, ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख और प्रस्तुति गर्जन सिंह वरकड़े की है।
1: ये एक सिद्ध तथ्य है कि बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश मिल जाए तो जीवन अपने श्रेष्ठतम रूप में होता है। वैसे ये सच है, हर नवीन के लिए पुरातन को मूल्य चुकाना ही पड़ता है। पुरातन अगर मूल्य ना चुकाए तो नवीन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन दुखद स्थितियां वहां पैदा होती हैं जहां नवीन पुरातन के प्रति, वर्तमान अतीत के प्रति और युवा बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने में हिचक महसूस करते हैं। निश्चित ही ये इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। उंगली पकड़ के चलना जिन्होंने जिनको सिखाया है, यदि वे ही उन्हें अंगूठा दिखाने लगें तो इससे बढ़कर अंधेर और दूसरा क्या हो सकता है। जीवन मूल्यों में गिरावट का इससे निकृष्टतम दूसरा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे आचार विचार यदि दुनिया की नियति बनते हैं तो मानव संबंधों का सारा ताना बाना ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए कम से कम भारतीय परिवेश में तो हर स्तर पर मानवीय मूल्यों और जीवन मूल्यों पर चिंतन मनन होना ही चाहिए। निश्चित ही आज परिवार समाज के सामने ये मुश्किल सवाल पैदा हो गया है कि बुजुर्गों का मान सम्मान कैसे लौटे। पुरातन परंपरा से टूटकर आज की परिस्थिति में क्या खो गया है, इसकी व्याख्या कठिन है। उनसे नाता तोड़ने का मतलब है खुद को अतीत से जोड़ती कड़ियों और अपनी संस्कृति और सभ्यता से अपने को अलग करना। बुजुर्ग पीढ़ी सामूहिक ज्ञान की अजस्र धारा की तरह है। बुजुर्गों की स्थिति पर लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं, उनके साथ ही भारतीय परिवार की रही सही मर्यादा और प्रतिष्ठा समाप्त हो चली है। पाश्चात्य प्रभावों को हमने बिना सोचे समझे ग्रहण किया है, इसीलिए शायद उपयोगिता की दृष्टि हम पर पूरी तरह हावी हो गई है। यानी जब तक व्यक्ति उपयोगी है तब तक उसका महत्व है। उपयोगितावाद का ऐसा विचार तो भारतीय संस्कृति में कहीं देखने में ही नहीं आया है। इसलिए अभी भी समय है हम अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को जानें, समझें और वृद्ध जनों के प्रति आदर भाव रखें। जिस सम्मान के वे अधिकारी हैं वो उन्हें दें। आज बेटों के लिए माँ बाप बोझ होते जा रहे हैं। संस्कारवानों को ऐसा सुनने में ही अटपटा लगता है। अपने समय को जिस सच्चाई के साथ साहित्य उजागर करता है, उतनी सच्चाई के साथ उस समय को दूसरा कोई और उजागर नहीं कर सकता। तो साहित्य के माध्यम से भी इस पक्ष को हम जानने का प्रयास करते हैं तो वहां भी बुजुर्गों के प्रति घटते आदर भाव दर्शाने वाली रचनाएं ही सामने आ रही हैं। रचनाकार राजेंद्र यादव यही कहते हैं कि उनके पास जो कहानियां छपने के लिए आती हैं उनमें बुजुर्गों की निरर्थकता और अप्रासंगिकता का ही वर्णन होता है। ये कहीं समय का भद्दा मजाक तो नहीं है कि पहले आपके बच्चे आप पर निर्भर थे, अब आपको उनका मुंह ताकना पड़ता है। बंधनों से टूटने का अनुभव किसी जख्म में चीरा लगने जैसा होता है, पर अपराध बोध की अनुभूति मन के किसी कोने में गुम हो जाया करती है और जीवन की आपाधापी में परिवार के वृद्ध जनों के लिए समय निकाल पाना असंभव जान पड़ता है। पर यह अपराध बोध बहुत बाद में जागता है। ऐसी ही बातों के लिए शायद ये कहावत प्रचलित हुई होगी, जननी जने तो भक्त जने, संत जने या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। परिवार समाज के नए समीकरणों के बीच नए जमाने के लिए यही कहा जा सकता है, पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहिए, वे दुआ देंगे।
0: चिंतन का प्रसारण किया गया। आलेख और प्रस्तुति थी गर्जन सिंह वरकड़े की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर है उत्तरा केलकर का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

0: श्री रामचरित मानस का गायन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। गायक स्वर था उत्तरा केलकर का और संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामाय की भिड़ा खाड़ा चकोट।
1: दीदी मन आज मैं तुमके नड़ेर चो कमानी वाट के सांगे नड़ेर चो कमानी काजे कम ले कम 1.2 मीटर गड़िया माटी बीती ठान खूबे नगत रहे से संगे संगे हुन ठान चो पानी धर तो सकत बले नगत रतो राय खाले बाटे ठस पखना बीती पानी थेबलो खाले चो भूई आरु आगर चिकन माटी नड़ेर कमानी काजे नगत नी रहे। नड़ेर चो कमानी काजे पानी होतोर नगत वर्षा होतोर आरु सिंचाई बले खूबे जरूरी आए। नड़ेर चो नगत किसी मन के सुना

0: पहिल किसिम आहे केराबस्तर, जोन ठाणने आगतले नरेर कमानी निकरसोत असन ठाणकाजे एक किसिम खूबे नंगत आहे। ये किसिम सुखा सहनशील किसिम आहे। ये किसिम ने गोटो गचने 85 ठान फर फरे से, फरने पानी 330 मिलीलीटर तक रहे से और पानी स्वाद बीती रहे से। असनी दूसर किसिम के बले आमी धरुक सकूं, दूसर किसिम मंचो नाव मन के मैं सांगून दें से IND051 IND039 कल्पमित्र चंद्र शंकरा लक्षदीप आर्डनरी ये सपाय नडेरचो किसिम मनात। ये सपाय किसिम संगे नडेरचो उपजन के आगर करतो काजे शीतकार बेरा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ले कम होन गेले सिंचाई आगर करुक लागे से। संगे संगे जेठ बतर ने अप्रैल ले जून महीना सिंचाई के कम नी होक देतो राय और राती बेरा कचरा काड़ी मन के डसाउन कोमला करतो राय। बीज के छाटून भाती नर्सरी ने जून जुलाई महीना ने लगाउक पड़े से। फिर हुता गोटोक बरख ने तैयार होलो बूटा, जे थाने गोटोक ले 6 ठान पाना होली से बूटा आधा भीता महा मोटरो हो और पाना फुटू रहो असन बूटा मन के लगातो राय। एचो कमानी काजे भूई के साफ सफाई करुक लागे से, डेंग था खोय से जाले सम बनाउक लागे से। फिर 1 मीटर लाम ओसार आरु गड़िया खोदरा खोड़ुक लागे से। ये काम अप्रैल महीने करतो राय, तेबे खोदरा ने घाम पाए दे और कीड़ी माकड़ी बीमारी चो नानी कीड़ी घाम पाउन मरुन जा दे। फिर जून ने खोदरा के माटी आरु नंगत सरलो गोबर के मिसाउन भरतो राय। जसन सिंचाई काजे सुविधा आसे बल्ले रोपतो काम बरसा ले 20-25 दिन पूरे बल्ले होक सके, जे चोले बरसा मूर होतले बूंद नगद बसुन रहे दे। मांतर लेख करतो राय कि बूटा मंडालो ठान ने पानी नी थेबो। नड़ेर बूटा के 11 हाथ लामी लामा मंडातो राय। चौकोन हिसाब ले मंडाले 2.5 एकड़ ने 177 ठन बूटा मंडातो होक सके। बूटा मन के मंडाते खन खूबे राखा जागा करुक लागे से। रोप तो बूटा के आगर घाम ले बचा तो काजे छाए देतो राय और सिंचाई करते रहतो राय। बरसा बेरा पानी निस्का तो नंगत हिसाब रहतो राय और शीतकार बेरा बूटा के बचा तो काजे सिंचाई करते रहतो राय और बूटा लगे लगे कुमला करते रहतो राय। बूटा लगे चो ठान ने लाटा बूटा नी रहू देतो राय। नड़ेर बूटा चो नंगत बाढ़ती काजे बरसा मूर हो तो पहिल 40 ले 50 किलो गोटोक गच हिसाब ने जैविक खत दिलो ने नंगत रहे से। गोबर खत नहाले कंपोस्ट संगे 5 किलोग्राम लीमचो खत के लगा ले माटी सुधरे से और पानी धरतो सकत बाड़े से चे। संगे संगे इस्त्रवण नावचो बीमारी ले बले बूटा बाचे से। नरेर बूटा ने 200 ले 300 लीटर पानी गोटोक बूटा हिसाब ले 4-4 दिन ने जेठ बत्तर ने देतो राय। शीतकार बेरा 1-1 हफ्ता पाछे पानी देउक लागे से। पानी कम रलो हिसाब ने नरेर गच्चो चारो कुती 2 फीट ले 4 ठान भीने भीने ठान ने टपक सिंचाई हिसाब ले 60 ले धरून 80 लीटर पानी रोजे दिना हिसाब ले दिलो ने बले होक सके। नड़ेर बूटा ने तनाश्रवण बीमारी जौटे से। ये होलो ने गच ने खंडिया खंडिया महा होन जाए से, हुताले लाल धमसिया महा रंग बोय से, जोन सुकून भाती करिया होन जवाए। ये जुलाई ले नवंबर तक होय से। ये रोग होलो ने बूटा मरुक सके। ए चोले बचा तो काजे बरसा मूर होलो बेरा गोबर नहाले कंपोस्ट खत संगे 5 किलोग्राम लीम खली गोटोक गच्चो हिसाब ने रोजे बरक देतो राय। रोग होउन गेलो ने सबले पहिल करिया लसा के छेनी संगे काटून निस्काउन देतो राय और हुता ट्राइकोडर्मा विरडी एके लिपुन देतो राय। असन होलो ठान ने बार्डो पेस्ट बल्ले 100 ग्राम तूतिया और 100 ग्राम चूना के 1 लीटर पानी ने घोरून लिपलो ने बले गुणकारी होय से। गोटोक रोग होय से शिखर अवरुद्ध। ये रोग होलो ने पाना मंचो पूरे बाट कोचमलो महा पाना झोपा ने निकरतोर, पाना चो पूरे बाना दखा देतोर, पाना कम होतोर दखा दे से। ये रोग माटी ने बोरान जीनिस कम रलो ने होय से। एकाजे माटी परीक्षा करालो ने माटी ने बोरान जीनिस कम दखा दिलो ने बरक कारणे 2 फरवरी ले मार्च आरु अगस्त ले सितंबर ने 50 ग्राम सुहागा गोटोक गच्चो हिसाब ने देतो राय। दादा दीदी मन ये रहे नड़ेर कमानी चो वाट। असन हिसाब ले कमानी कर लो ने तुम्ही नड़ेर चो खूबे उपजन पाउक सकास।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चो गोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हुलहुली। आज इस कार्यक्रम में सुन रहे बिरली पाड़, कलाकार हैं श्रीधर और साथी।

बिरली पाड़। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हुलहुली में ये पाड़। कलाकार थे श्रीधर और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले हम आपको बता दें, श्रोताओं, आज इंग्लैंड के हेडिंग्ले लीड्स स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से 6:45 तक, 7:00 से 8:45 तक और फिर 9:15 से मैच की समाप्ति तक। श्रोताओं, हम आपको बता दें, ये हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और इसे आप हमारे मीडियम वेव केंद्र पर सुन सकते हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, हमारे आज के दिन भर के प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुन सकते हैं

नमस्कार जगदलपुर। इस कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे रसरंग और मधुरिमा। 7:30 पर हलवी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। विभिन्न बोलियों के लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी हम प्रसारित करेंगे 8:30 पर। झुमझुमा हलवी लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं लखेश्वर और साथियों के गाए हलवी लोकगीत। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम सुनवाएंगे 9:30 पर। आज की फिल्म होगी साथिया। गुलशन इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं शीर्षक गीत। आज का शीर्षक होगा हवा। गुड़दुम 10:30 पर इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भतरी लोकगीत। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे सुबह 11 बजे। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा पार्श्वगायिका सोना महापात्र पर केंद्रित कुछ फिल्मी नगमे। सबरस विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं कुछ लोकगीत। समय रहेगा 11:30 का। दिन के 12 बजे आप सुन सकते हैं कलाकारों पर आधारित कार्यक्रम कला और कलाकार। घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे 12:30 पर। आपके फरमाइशी फिल्मों के गीतों को लेकर के 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनेगा दोपहर 2:30 पर। शाम की सभा में कार्यक्रम विवरण लेकर हम उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी 5:10 पर। मैच के अनुप्रसारण के कारण श्रोताओं आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं FM और मोबाइल ऐप पर। इसी क्रम में बस्तर के स्वर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचे गांव हम लेकर के आएंगे 7:21 पर। कुड़ई फूल में हलवी लोकगीत होंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर पीला मन काजे कोट और पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। 9:30 पर शासकीय योजनाओं के कार्यक्रम उवाट में आप सुन सकते हैं कुछ जानकारियां। प्रस्तुति होगी CR कश्यप और लुभान पाणिग्रह की। 10 बजे ग्रामीण परंपरा और योग पर परिचर्चा सुना जा सकता है और कुछ पुराने फिल्मी गीत हम लेकर के आएंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम होगा रजनी गंधा। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 35th 2000 दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायि शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रियविधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापानदेशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25th 2000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अन्तिम वारम मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अंकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इसे आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ट्यून कर सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आइए हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें आज की इस सुबह के नमस्कार जगदलपुर के साथ। आज के नमस्कार जगदलपुर में मैं हूं लक्ष्मी कोड़िकल आपके साथ। स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन और नमस्कार।

0: यकीनन श्रोताओं, इन दिनों कहीं बहुत ज्यादा गर्मी की तपन है या कहीं बारिश हो चुकी है, फिर भी मानसून का पूरा आगमन नहीं हुआ है। बारिश हुई भी है तब भी हम गर्मी से हलाकान हैं। राहत का इंतजार हम सबको है, बारिश का इंतजार हम सबको है। जी हाँ श्रोताओं, इस गीत को सुनकर के यही लगता है कि तेज बारिश हो और सुकून हो। हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि बढ़ते औद्योगिकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, डामरीकरण और भी कई वजहों से लगातार गर्मी बढ़ रही है। पेड़ों के कटने से न सिर्फ गर्मी बढ़ रही है बल्कि उपजाऊ भूमि भी बंजर हो रही है। भूमि का लगातार कटाव हो रहा है और बहुत सारे जगहों पर सूखे की स्थितियां भी हैं। और इन सब के रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज 17 जून है और हम यही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और इसके लिए उपायों को बढ़ाना है कि किस तरह से हम मरुस्थल बनने वाली भूमि को रोक पाए। श्रोताओं, कारण चाहे जो भी हो, निदान तो एक ही है कि पेड़ लगाए जाएं। सिर्फ स्टेटस में लगाने के लिए नहीं बल्कि सच में हम पेड़ लगाकर उनकी जिम्मेदारी लें। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिद ने सूखी भूमि को हरियाली से भर दिया, रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। उनके इस प्रयास से वृक्षों के कारण धरती का जल स्तर भी बढ़ गया और गर्मी भी कम हो गई। तो क्यों ना आने वाले इस बारिश में हम भी एक पेड़ लगाएं, ना सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उस पेड़ की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लें। और जब बात इस भूमि की हो रही है, इस धरा की हो रही है, तो हम अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत भूमि को कैसे भूल सकते हैं, जो वीर सपूतों और शूरवीरों के त्याग, वीरता और शौर्य भूमि के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही महान योद्धा और अदम्य साहस के रूप में हम याद करते हैं महाराणा प्रताप जी को, जिनकी आज जयंती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ के 13वें शासक आपके संघर्ष, भील जनजाति के समर्थन और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद किया जाता है। मुगलों के सामने कभी न झुकने वाले इस वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। श्रोताओं, ये तो थी आपकी और हमारी अपनी बात, चलिए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
7: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
8: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
7: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuaiar.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
9: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: इन संदेशों के बाद आपका फिर स्वागत है। नमस्कार जगदलपुर में। आज बुधवार है और आज हम आपको सुनवाते हैं रसरंग। आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है, आलेख है चंद्र ऋषि ठाकुर का।
10: गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय जोहार, कैसे हैं आप सब श्रोताओं। आज रसरंग में हम बात करेंगे अनोखे चांद की।

खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये साथ ही एक अजूबा भी है। चंद्रमा अपने अंदर इतने सारे रहस्य छुपाए हुआ है कि आप अगर उन रहस्यों को जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। तो चलिए आज रसरंग में हम बात करते हैं अपने चंदा मामा के बारे में।

चंद्रमा। आज भी एक आशिक अपनी महबूबा की खूबसूरती की तुलना चंदा से करता है। इस चांद का मानव इतिहास से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जहां एक ओर बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यहां तक कि हमारे पुराणों में तो चंद्रमा को देवता का दर्जा भी दिया गया है। श्रोताओं, चांद का इतिहास बहुत पुराना है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से भी काफी पहले से चांद का अस्तित्व था। चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक बने, और अब तक तो कई वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। यहाँ तक कि चांद के अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए कई रिसर्च टीम और यान भी भेजे जा चुके हैं। तो चलिए, मैं भी आज आपको चांद से जुड़ी कुछ रहस्यमय जानकारियां देती हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, तो उन्होंने बताया कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, वहां पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वहां से आकाश सदैव काला दिखाई देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि चांद पर वातावरण ना होने के कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे इसके भीतर पहुंच जाती हैं, जिसके कारण चांद पर दिन में तापमान 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म, और रात का तापमान रेन 153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड। इसलिए चांद पर फिलहाल जीवन संभव नहीं है।

श्रोताओं, चांद का हिस्सा हमारी पृथ्वी से मात्र 50-60% ही दिखाई देता है और हमारे ग्रह पृथ्वी का उपग्रह चांद हमारी पृथ्वी से 384,403 किलोमीटर दूर है और चांद हर वर्ष

3.8 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। चंद्रमा पर छोटे छोटे भूकंप भी आते रहते हैं और इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। श्रोताओ, जब हम चांद को अपनी धरती से देखते हैं तो वो हमें छोटा सा और खूबसूरत दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के समान है और ये जो आप चमकता हुआ चांद देखते हैं, असल में चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश ही नहीं है, ये सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। ये गोल ना होकर अंडाकार है और जो आशिक अपनी महबूबा की खूबसूरती की तुलना चांद से करता है, तो उन्हें हम बता दें कि चंद्रमा के धरातल पर विशाल गड्ढे, पहाड़ और खाइयां हैं। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर उल्का पिंडों से परस्पर टकराने के कारण चांद पर ये गड्ढे बने हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक चांद नहीं है, कई चांद है जो सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों के उपग्रह हैं। हमारी धरती का वजन चांद से 80 गुना ज्यादा है और ये 27 दिन 7 घंटे 11.6 सेकंड में धरती का एक चक्र पूरा करता है। और सूरज की भांति ही चंद्रमा पूर्व में उदय होता है और छिपता है पश्चिम में।

श्रोताओ, हमारी पृथ्वी पर होने वाली कई प्राकृतिक घटनाओं का कारण भी चांद होता है, जैसे कि समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। और आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में तो जानते ही होंगे कि धरती के सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये जो हमारे चंदा मामा है वो लगभग 4.5 अरब पुराने हैं। चंद्रमा पर पानी ना होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर पानी को लेकर खोजें चल रही हैं। यह भी कहा जाता था कि पहले चंद्रमा हमारी धरती का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक बड़ी चट्टान, उपग्रह या उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर गिरने से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। चांद हमारी पृथ्वी का एक लौता प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखा आपने, हमारे चंदा मामा खुद में कितने रहस्य समेटे हुए हैं।

0: तो श्रोताओं, ये तो था आज का रसरंग, जो कि केंद्रित था अनोखे चांद पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का रसरंग अच्छा लगा होगा। अब हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: रसरंग, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख और प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लिख भेजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। इस समय वक्त है 7:30 का। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं हलबी समाचार बुलेटिन की ओर।

ही आकाशवाणी जगदलपुर अलबिनी समाचार बुलेटिन संगे मैं शांति नाग पहिल आज के मूल खबर। छत्तीसगढ़ ने बिजली दर मन ने करतर होली बाढ़ती 1 जुलाई ले लागू हुए दे बाढ़ दर मन। गर्मी छुट्टी चो पाछे 16 जून ले खुली प्रदेश चो सपा सरकारी और प्राइवेट स्कूल। 27 जून तक मनाकर हो दे शाला प्रवेश उत्सव। मानसून के दखते प्रदेश चो सपा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण पर्यटक मन का 1 अक्टूबर तक बंद कर दो होली। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चो 14वां चरण मोर अभियान भीतरे 16,20,000 लोग मन चो मलेरिया जांच चो लक्ष्य संगालोरा से। अदाय खबर सरसराले। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग घरेलू उपभोक्ता मन चो बिजली दर मन ने 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट चो बढ़ती कर ली से। ए प्रकार ले आयोग बिजली दर मन ने 6.23% चो औसत बढ़ती कर ली से। होता है गैर घरेलू उपभोक्ता मन चो बिजली

दरमन ने 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट जो बढ़ती करलो राशि। कृषि पंप मन काजे बिजली दर मन ने 40 पैसा प्रति यूनिट जो बढ़ती करलो राशि। होता है गैर सब्सिडी बीती कृषि पंप कनेक्शन मन के ऊर्जा प्रभार ने दे तो बीती छूट ने 30% ले बढ़ती करुण 40% करलो राशि। बिजली चो बढ़ती दर प्रदेश ने 1 जुलाई ले लागू हो दे। महिला स्व सहायता समूह ले चलतो बीती उद्योग मन बस्तर और सरगुजा संगे राज्य चो गांव मन ने चलतो बीती अस्पताल नर्सिंग होम डायग्नोस्टिक सेंटर के छाड़ून चिवड़ा और लाई मिल मन के ऊर्जा प्रभार ने दे तो बीती 10% छूट के उसने संगालो राशि। देरी ले करतो बीती भुगतान ने धरतो बीती अधिभार के अदाय हर महीना चो ठान ने हर दिन चो हिसाब ले धरतर हो दे। होता है अग्रिम भुगतान ने देतो बीती 25% छूट के कम करुण 0.75% करलो राशि। छत्तीसगढ़ विधानसभा चो मानसून सत्र 13 जुलाई ले मूर हो दे। विधानसभा चो सचिव दिनेश शर्मा ए बारे ने अधिसूचना जारी करला से 17 जुलाई तक चलतो बीती ए 5 दिवसीय सत्र ने कुल 5 बस का हो दे। सत्र दाय वित्तीय काम संगे दूसर वाले सरकारी काम करतर हो दे। गर्मी छुट्टी चो पाछे मंगलवार 16 जून ले प्रदेश चो सपा सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुली से एचे संगे स्कूल मन ने 16 ले 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव बनाए सोत। ए समय ने स्कूल अमर तो नुआ भर्ती होलो पिला मन के टीका लगाउन स्वागत कर सोत। हुता है पड़तो पिला मन के फोकहा ने पुस्तक ड्रेस और साइकिल बले बाढ़तर हो से। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नुआ शैक्षणिक सत्र ने पड़तो पिला मन के शुभकामना देते हुन मन के पूरा लगन और हरिक ले पढ़ाई करतो संदेश दिला से। श्री साय बल्ला स्कूल शिक्षा पाओ तो ठान चिन्हु है बल्कि पिला मन चो सपना के आकार देतोर और उज्जर भविष्य चो न्यू संगा तो माध्यम आए। हुनमन पिला मन ले पूरा आत्मविश्वास अनुशासन और हरिक ने रोजे दिना स्कूल जातोर और मन लगाउन पढ़ाई करतो गुहार करला। उतार मुख्यमंत्री प्रदेश चो सपा जन प्रतिनिधि मन के चिट्ठी लिखून शाला प्रवेश उत्सव ने सक्रिय भागीदारी काजे गुहार करला। हुनमन बल्ला की शिक्षा कोनी बले समाज और देश चो बाढ़ती चो सबले सशक्त आधार आए और ए आमी सपा चो जिम्मेवारी आए की प्रदेश चो कोनी बले पिला शिक्षा ले निबाचो। नुआ शिक्षा सत्र मूर हो तो संगे ची प्रदेश चो स्कूल मन ने राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत और राज्य गीत संगे कई और बले गतिविधि मन आयोजित करतोर हो से। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गेलो 14 जून के रायपुर ने 13 राज नहीं आएगा रे पुस्तक चो विमोचन करला। ए मौका ने मुख्यमंत्री बल्ला की नक्सलवाद चो कारण ने बस्तर चो लोग कई दशक तक बाढ़ती ले दूर रला। हुनमन बल्ला की अदाएं ए बाटे झपके बाढ़ती काम करतोर हो दे। ए चुकाजे रोड मैप तैयार करलो रासे। मुख्यमंत्री सांगला की गांव-गांव ने राशन दुकान खोलतोर होए से और सुरक्षा शिविर मन के सेवा डेरा चो रूप ने बनातोर होए से। कृषि और पशुपालन चो बाढ़ती करतो संगे ची वनोपज चो मूल्य संवर्धन बल्लो ने गुण और बाजार कीमत और उपयोगिता ने बले जोर देतोर होए से। हुनमन बल्ला की एबे चो समय ने 85% असन आबादी चो मासिक आय 15,000 रुपया ले कम आसे। केंद्र और राज्य सरकार चो योजना मन ले ये तो 3 बरक ने हुनमन चो आय के बल्लो ने कमानी के 2 गुना करतोर लक्ष्य संगालो रासे। मुख्यमंत्री सांगला की बस्तर ने हर एक जनजातीय परिवार के 2-2 ठान गाय भैंस देतोर हो दे। ए मौका ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह बल्ला की खुबे समय तक ध्यान नी दिलो कारण ने नक्सली मन बस्तर के आपलो प्रयोगशाला असन इस्तेमाल करला। हुता उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बल्ला की सरकार नक्सली मन चो गोली चो उत्तर गोली ले दिली से और दाएं बोली चो उत्तर बोली ले बल्लो ने गलत नेरेटिव चो उत्तर सही जानकारी ले देतर हो दे। श्री शर्मा सांगला की आत्मसमर्पण करतो बीता नक्सली मन चो पुनर्वास काजे हर प्रकार चो हो तो बीती कोशिश करतोर होए से। हुनमन सांगला की जोन जुआन मन चो नक्सली मन नसबंदी करू रोहोत हुन मन चो नसबंदी के खोलतोर कोशिश करतोर होए से और जोन मामला मन ने ये नी होए दे हुन मन के टेस्ट ट्यूब बेबी चो सुविधा देतो बाटने काम करतोर होए से। उदीम के 5 जन्ने चो संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी चो अध्यक्ष शशांक शर्मा बले संबोधित करला। 13 राज नहीं आएगा रे पुस्तक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू लिखला से। मानसून के दखते 15 जून ले छत्तीसगढ़ चो सपा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण पर्यटक मन काजे बंद करलो राशि। ये सपा संरक्षित वन क्षेत्र अदाय 1 अक्टूबर तक बंद रह दे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण पांडे सांगला की हर बरक बरसात पहल टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण मन के बंद करतर हो से 1 अक्टूबर तक प्रदेश जोन मूर संरक्षित रान मन आसे पर्यटक मंच जातोर पूरा बंद रह दे। हुनमन अचानक मार टाइगर रिजर्व उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान संगे ची प्रदेश चो दूसर सपाय अधिसूचित अभ्यारण और

संरक्षित वन क्षेत्र शामिल आसे। श्री पांडे सांगला के वन्य प्राणी सप्ताह चो मोहका ने 2 अक्टूबर ले जंगल सफारी और दूसर पर्यटन स्थल मन पर्यटक मन का जे फेर ले खोलतर हो दे। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चो 14वां चरण चो मूर 15 जून ले होली से ए हार बस्तर संभाग चो 7 जिला मन बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर कांकेर और कोंडागांव संगेची गरियाबंद कबीरधाम और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला चो संवेदनशील गांव मन ने बले ए अभियान चलातर हो से। अभियान भीतरे राज्य चो 36 विकास खंड मन चो 697 उप स्वास्थ्य केंद्र मन चो भीतरे एतो बीती 2476 गांव मन ने सर्वेक्षण करतर हो दे। ये अभियान भीतरे लमसम 16,20,000 लोग मंचो मलेरिया जांच चो लक्ष्य संगालो रासे। अभियान का जे स्वास्थ्य विभाग बाटले 2063 सर्वे दल बनालो रासे जोन गांव-गांव और घर घर जाऊन जर धरलो मनुक चो पहचान कर दे। जरूरत पड़लो ने त्वरित जांच किट ले मलेरिया चो जांच कर दे और संक्रमित होलो मनुक मन के तुरते इलाज करातर हो दे। इचो संगे ची लोग मन के मलेरिया ले बचाव मच्छर नियंत्रण और समया ने जांच और उपचार का जे जागरूक बले करतर हो दे। स्वास्थ्य विभाग चो हिसाब ने बरक 2015 ले बरक 2025 ने मलेरिया चो कुल प्रकरण मन ने 80% असन कमी दर्ज करलो रासे। एहार अभियान ने पीला मन और खिंडी बड़े पीला मन चो सुरक्षा ने बले चुके ध्यान दिलो रासे। ये चुकाजे स्कूल मन छात्रावास मन आश्रम मन पोटा केबिन मन और अर्धसैनिक बल शिविर मन ने अलग अलग टीम मन बना लो रासे। स्वास्थ्य विभाग लोग मन ले गुहार कर ली से कि सर्वे दल हुनमन चो गांव नहाले घर अमरलो ने हुनमन जांच ने सहायता करो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA मेडिकल चो स्नातक पाठ्यक्रम ने भर्ती काजे फेर हो तो बीती परीक्षा चो प्रवेश पत्र जारी कर ली से। एक NTA चो वेबसाइट ने डाउनलोड कर सकोत। ये परीक्षा ये तो 21 जून के अड़ू पहार 2 बजे ले होई दे। अई मंजी NTA पड़तो पिला मन के पैसा आपस धरतो काजे प्रवेश पत्र डाउनलोड करतो पहिल आपलो बैंक खाता चो विवरण सत्यापित करतो सलाह दिली से। नीट परीक्षा के धरून छत्तीसगढ़ चो परीक्षा केंद्र मन ने बले सुरक्षा चो नंगत इंतजाम करतो होई से। अई लेन ने कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा गेलो 12 जून के परीक्षा केंद्र मन चो निरीक्षण करून तैयारी मन के दखला। ए दाय हुनमन हुंचो अधिकारी मन के परीक्षा चो आयोजन काजे जारी दिशा निर्देश मंचो नंगत पालन करतो काजे बल्ला। जानुक हो कि ये परीक्षा काजे जिला ने 2 परीक्षा केंद्र बना लो रासे। विश्व रक्तदान दिवस ने 14 जून के छत्तीसगढ़ ने कैक कार्यक्रम मन करतो होली। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी चो छत्तीसगढ़ इकाई बाटले लोक भवन ने होलो उदीम ने राज्यपाल रमेन डेका 30 जान स्वैच्छिक रक्तदाता मन के सम्मानित करला। हुता 241वीं बस्तरिया बटालियन सेड़वा चो वाहिनी मुख्यालय ने रक्तदान शिविर लगाला। शिविर ने बटालियन चो 24 अधिकारी मन और जवान मन आपलो इच्छा ले रक्तदान करून मानव सेवा चो संदेश दिला। डिमरापाल चो स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चो टीम शिविर ने सहयोग कर ली। ए दाय जवान मन हमेशा रक्तदान और समाज ने जागरूकता बढ़ाते संकल्प बले धरला। बस्तर चो खूबे रान मन और लगे लगे रलो गांव मन बाटे वन्य जीव मन चो सुरक्षा और मनुक रान जीव मन चो लड़ाई के कम करतो काजे बस्तर वन मंडल गोटक दूसर प्रकार चो पहल कर ली से। एचो भीतरे रान मन चो लगे लगे रलो खुला और असुरक्षित चुआ मन ने लोहा चो नेट लगातर हो दे। वन विभाग ए चुआ मन चो चारो कोती घेरा बनाउन हुनके लोहा चो मजबूत सुरक्षा जाली मन ले ढाकतो काजे विशेष अभियान मुर कर ली से जेके बरसा चो पहिल पूरा करतो लक्ष्य संगालोरा से। वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता सांगला की बस्तर वन मंडल ने 29 संवेदनशील चुआ मन के चिन्हा करून हुनके सुरक्षित बनालोर आसे। ये अभियान ने वन विभाग स्थानीय जन प्रतिनिधि मन वन प्रबंधन समिति मन और सादा लोग मन ले बले बल्ला से की हुन बाटे असन कोनी बले खुला नहाले असुरक्षित चुआ आसे तो हुंचो सूचना तुरते वन परिक्षेत्र कार्यालय ने दियास। जगदलपुर चो क्रांतिकारी डेबरीधुर उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र परिसर ने 13 और 14 जून के बस्तर आम महोत्सव चो आयोजन करतर होली। ये महोत्सव ने बस्तर संगे छत्तीसगढ़ चो कई क्षेत्र मन ले इलो किसान मन आमा चो 2000 ले आगर प्रजाति मन चो प्रदर्शन करला। ये तिहार ने पारंपरिक उन्नत और हाइब्रिड किसान मन चो आमा आकर्षण चो केंद्र रहे। ये मौका ने सांसद महेश कश्यप प्राकृतिक रूप ले तैयार आमा मन के वैश्विक पहचान देतो ने जोर दिला। होता है कलेक्टर आकाश चिकारा आम महोत्सव ने लगालो प्रदर्शनी के दखून आमा चो कैक देसी और हाइब्रिड प्रजाति मन के सहराला। कार्यक्रम ने जैविक खेती और आमा ले मूल्य संवर्धित उत्पाद बनातोर जानकारी बले दिला।
बीजापुर जिला चो नेमेड ने रलो शासकीय कोसा बीज केंद्र ने 10 और 11 जून के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम चो आयोजन करतोर होली। केंद्रीय रेशम बोर्ड भीतरे क्षेत्रीय रेशम उत्पादन और अनुसंधान केंद्र जगदलपुर बाटले आयोजित कार्यक्रम ने वैज्ञानिक मन हितग्राही मन के कोसा उत्पादन रोग प्रबंधन आधुनिक पालन तकनीक मन और उत्पादन वृद्धि चो कैक उपाय मन चो जानकारी दिला। कार्यक्रम ने रेशम फसल दाय नंगत उत्कृष्ट प्रदर्शन करतो बिता हितग्राही मन के सम्मानित करला। जानुक हो कि गेलो फसल सत्र ने नेमेड केंद्र ले जुड़लो समूह चो 17 सदस्य मन लमसम 15 लाख रूपया चो कोसा बिकला से। कोंडागांव जिला चो ओंडार गांव ने पुलिस बाटले सहयोग चौपाल लगातार होली। उप पुलिस अधीक्षक स्निग्धा सलामे और थाना प्रभारी गोपेंद्र पटेल चो रोलोदाय होलो बीती ए चौपाल ने सरपंच पंच गायता पुजारी और गौरिया शामिल होला। एदाय पुलिस अधिकारी मन गौरिया मन ले गाँव चो समस्या के धरून गोट बात करला। एदाय पुलिस अधिकारी मन गौरिया मन के साइबर ठगी ले बाजतो काजे जागरूक करला। एचो संगे ची मेहरार मन और लेकी मन चो सुरक्षा पाक्सो एक्ट और यातायात नियम मन चो जानकारी बले दिला। सुकमा जिला चो जुआन मन के प्रतियोगी परीक्षा मन चो निःशुल्क तैयारी करातो काजे सक्षम कोचिंग ने भर्ती काजे ये तो 25 जून के परीक्षा आयोजित करतर हो दी। मन कर लो अभ्यर्थी 23 जून तक सक्षम कोचिंग और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र ने आवेदन पत्र जमा कर सकोत। जिला प्रशासन चो उद्देश्य दूरिया और भीतर बार चो शिक्षित जुआन मन के मार्गदर्शन देवन हुनमन के PSC व्यापम बैंकिंग और दूसर प्रतियोगी परीक्षा मंच तैयारी करातो राय। चंडीगढ़ ने 11 ले 13 जून तक होलो बीती ओपन नेशनल जूडो प्रतियोगिता ने कोंडागांव चो हेमवती नाग कांस्य पदक जीत ली से। हुन 40 किलोग्राम भार वर्ग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते ए पदक पावली से। ये उपलब्धि ने जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ राज्य बाल्य कल्याण परिषद महिला और बाल विकास विभाग हेमवती नाग के बधाई और शुभकामना देते हुन चो उज्जर भविष्य चो कामना करला से। सरासरी दाय मूर खबर।

उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण पर्यटक मन का जो 1 अक्टूबर तक बंद कर दो होली। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जो 14वां चरण हो अभियान भीतरे 16,20,000 लोग मन चो मलेरिया जाँच लक्ष्य संगालो राशि।

0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर और इस भाग में आपका फिर स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लक्ष्मी गुड़िकल। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: नमस्कार जगदलपुर में इन संदेशों के बाद अब वक्त है मधुरी माँ का। खुशियों के ठिकाने बहुत होते हैं, मगर उसके मुस्कुराने की वजह से ये दिल आशिक हुआ जाता है।

दीवानगी तो कर बैठे इश्क में, दीवानगी तो कर बैठे इश्क में, उनके घर जाकर अपने घर का पता पूछते हैं, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका करते हैं।

दीवानगी की क्या बात करें। जी हाँ, दीवानगी की क्या बात करें। सिसकते ख्वाब आंखों में बसाकर सितारों पर नजर दीवानगी है। खुले आंखों या बंद पलकों से सपने देखें, वही दीवानगी है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जिंदगी के सफर में बढ़ते चलिए, जिंदगी के सफर में बढ़ते चलिए, धूप हो या छांव बस चलते रहिए। इसी शुभकामना के साथ, शुभ दिवस की कामना के साथ, मैं लक्ष्मी कुड़िकल नमस्कार जगदलपुर के आज के संग से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
6: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
7: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
6: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
8: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
6: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
9: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक मंजरी। अब लीजिए सुनिए योगिता सिन्हा और साथियों की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकमंजरी। अब इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राम और साथियों के आवाज में ये भत्री लोकगीत।

आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों के लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार हैं अमचिरी बाई और साथी।

आप सुन रहे थे लोकमंजरी। अभी आप सुन रहे थे बुधराम कश्यप और साथियों के गाए हलवी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झुमझुमा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हलवी लोकगीत। कलाकार हैं लकेश्वर खुदराम और साथी।

बाउंस चो और बलिया से का एक बाजा बाउंस आय दादा दीदी बाजा मन चो राजा भाई मन आम चो दादा मन बाउंस नोलोर आम चो कई बल बाजा बनुक नी सके हो बाउंस आम चो बाजा मन चो राजा आय बल्ला सोता।

दादा दीदी मन, परातो के दकुन गुंडाधूर, चेगालो धनु ने कांड, गोटो कांकी ने सोर्याउन, झाड़ूक धरलो अंग्रेज बाटे कांड, तो कायदा के से कांड सररररररर जाऊन बाती सीधा मूड चो सोर ने रली और अंग्रेज चो टोपी हिटून पड़ली असन कांड मारलो। और हुताय ले मूर होए से आमचो ये भूमकाल चो कैनी और लड़ानी जुजानी, दूसर कांड पंती ने चेगालो कि ये चलो पूरे अंग्रेज उठून बाती डर काजी आप लोग घोड़ा ने चेगुन बाती परालो और ये तायले होए से भूमकाल चो मूर।

के गाए से टोपी असन दका दे तो बीति छतरी हो भाई, सब लोग के निको भाई से, और आम चो बस्तरिया मन के तो छतरी, आम ये चो कीर्ति के गाँव से।

0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत। कलाकार थे लकेश्वर खुदराम और साथी। कार्यक्रम झुमझुमा में आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है साथिया।

0: सोनू निगम की आवाज में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत निर्देशन दिया था A.R. रहमान ने। फिल्म थी साथिया। जी हां श्रोताओं, आज कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथिया के कुछ चुनिंदे गीत। श्रोताओं, ये फिल्म आई थी सन 2002 में। बॉलीवुड की एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही और इसका निर्देशन किया शाद अली ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है सुहासिनी मणिरत्नम ने। और ये फिल्म अपने मधुर गीतों के लिए दर्शकों के दिलों में आज भी बसी हुई है। इनके गीत सुनकर आज भी हम थिरक उठते हैं। लीजिए सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से।
1: डम डम डमक डम डम डमक डम डम डम

ऋचा शर्मा और महालक्ष्मी के स्वर में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म साथिया से। जी हाँ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथिया के कुछ गीत। मणिरत्नम की ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म अलाई पायुथे का आधिकारिक हिंदी रीमेक है ये फिल्म साथिया, जिसकी पूरी शूटिंग मुंबई में की गई और इसके सभी गीतों के लिए संगीत दिया एआर रहमान ने और शब्द रचना गुलजार की थी। लीजिए सुनिए एक और गीत।

फिल्म साथिया जिसके गीत आज आप सुन रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य कलाकार में थे विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, तब्बू, तनुजा और सतीश शाह। श्रोताओं, हर फिल्म की अपनी एक कहानी होती है जो हमें अपने से जोड़े रखती है और एक कलाकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस किरदार को निभाकर कि वास्तविक जिंदगी को हम तक जोड़ देता है। चलिए सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, हर फिल्म की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी को अभिनीत करते हैं कलाकार और पाते हैं पुरस्कार। पुरस्कार सिर्फ उनके नाम का नहीं होता, लेकिन दर्शकों में जगह बनाने का होता है। और इसी फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और फिल्मफेयर के लिए संगीत निर्देशन के लिए एआर रहमान ने पुरस्कार जीता और साथ ही गुलजार ने गीतकार के लिए ये पुरस्कार जीता। सोनू निगम और मणिरत्नम और गुलजार ने भी फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीते, जिसके गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। वो फिल्म है साथिया।

0: साथिया, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म के गीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेललाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सड़क बूंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अब से कुछ देर बाद अभनपुर से कुरूद के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ सीजन के लिए देशभर में की जा गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाए। श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा या आसमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। सुंदर राजपी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच ड्यूएल ज्वाइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। ड्यूएल ज्वाइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र आईआईटी भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया

जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना होते हुए दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगलला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरवगढ़ पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2,00,000 सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शीर्षक गीत। आज हमने शीर्षक लिया है हवा। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात से। रमेश शास्त्री के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो दुनी चार से। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म थी सीता और गीता, स्वर था किशोर कुमार और आशा भोसले का, संगीत आर डी बर्मन का और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। अब लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और फिल्म है बाबू।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू के इस गीत के बाद आइए अब हम आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को, जिसके लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, अपनी आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने और फिल्म है मिस्टर इंडिया।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए हसन जहांगीर के गाए इस गीत को, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है इंसाफ अपने लहू से।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक था हवा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: काजे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भतरी लोकगीत। कलाकार हैं मिरी राम बघेल और साथी।

बाटो बाटो जाए बाटो दामुना बाटो बाटो जाए बाटो दामुना टेंडो कर सियावाना सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जानो डोंगरे बुनिलु डोंगरो दानो डोंगरे बुनिलु डोंगरो दानो पाली पुकाहिलु सोनो सुजुनो कोनो गाइन मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जानो सोनो पिंडवा काजे जीती गलाया सोनो पिंडवा काजे जीती गलाया कली राजो टोकी मोनो सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जानो ये देते की दरा विचार करा ये देते की दरा विचार करा हाजिर गनी के दरा सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जानो आशा बोलो वाके आसो तेरुलू आशा बोलो वाके आसो तेरुलू बाटे बुरो सिला पानी सुजुनो कोन गाइन मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना उड़ीला गोरिया बसिला माले मालर गोरिया झूले सुजुनो कोन गाइन मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना गलार गलर करे बाली बोजारे गलार गलर करे बाली बोजारे डुरु का कंदीला जारे सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जानो ये देते की दरा विचार करा ये देते की दरा विचार करा आजीर गनी के दरा सुजुनो लाई दरा दरा सियोनी गले बदरा सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन आमर तुंग गुड़ा ये लगे नहीं आमर तुंग गुड़ा ये लगे नहीं डंगरी उतरा निगाई सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना गाहा कोमोली गाते बे सुनी दकु सुजुनो बोला लेकी मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना टेकी दर पुन बांधिया सुनो टेका दर पुन

तो कह दे गुरु राका सुजो न बोला ले की मोन कौन सो बोधो न ताली बाजे रन जाना आशा बोलो बाके आसो तेरे लू आशा बोलो बाके आसो तेरे लू बाटे बोरो सिला पानी सुजो न बोला ले की मोन।

0: बिलो हाथ के दरी जीते ने बिलो जाती चारिया ना बेलो
1: लगेटा ना गुड़ी जो गुना चला जो गुना चला लो पाऊआ पोको ना डेला लो जाती जुड़ूंगा जो पालो
0: लगेटा ना गुड़ी पोको।

जाडा बुदे पानी राजार पाई को जमरो दूत काय मा कोडिया तोर सुता रे दंदो मा कोडिया तोर सुता जांगर मौस के काटी कुवाई ले तिरी के नाही विश्वास रनावेल कारे रानी मच संगे खेलो चकड़ा लगी जाए अरे मीठा पान के दंदो टंडे गो बाबे खोदरा खोदरा गाले राजार पाई को जमर दूत माकड़ी हाथ तो रसुत रे दंदो माकड़ी हाथ तो रसुत जंगर मऊस काटी कु आईले तिरी के नाई भी सास रे दंदो तिरी के नाई भी सास कड़ा लगी जाए अरे या कि जुमु जाम जुमुरा लगला जबे गारे तिरिंकी तेजी न मन तू बीर रे तिरिंकी न बोलो मर रे दंदो तिरिंकी न बोलो मर तिरिंकी तेजीले गोविंद चंद्र रे तेबे तू हे बु अमर रनावेल कारे रानी चलो डुडू खेलो चकड़ लगी जाए अरे तले भेंडा पाना उपरे दो तीता तीरी पीतल मंगरी टुंगु चाटू चांगो बाजा हाजी तो आज दरा दंदो जोर पानी मन काली के खाए बाज बाजा रोनावेल कारे रानी मच संगे खेलो चकड़ा लगी जाए अरे सिरी री री री बावसी बाजू ऐठाने तो का पाले ची ची मोर चिड़ई सिका तो राया बुआ कुकुड़ा बिका का तो के दे लाई घर राका रोनावेल कारे रानी चलो डुडू खेलो चकड़ा लगी जाए करे आके जुमझा मजुमरा लगली जो घरे पानी भी रो बरो बालू तो कुमर पानी भी रो बरो बना रे दंदो पानी भी रो बरो बना आकाश भुवने मेड़ो बांधु आए पकी नहीं लारो डेना रोनावेल कारे राजा दुनी बाटे गे।

मचिलो लालो ला तम गुड़िया पिला के नक रहे लगे चिंगी मच पूरा जला रना बेल कारानी मच संगे खेलो चकड़ा लगी जाए को अरे दरुरा रे बोरी बूटा जाए से घरे आसा बोलो बाके आसा तेरे लुकाई बाटे बो रोसिला पानी रे दंदो बाटे बो रोसिला पानी टिकोरा कोसमी बो रोसिला पानी चेगी गला बो रोगनी चेगीला माचो के मुड़े बार बार।

तनी बेलो जानी रोना बेलो का सुंदर चलो डुडू खेलो चकड़ा लगी जाए को अरे सड़े चये सली चौरो ना पोला बाबू लाल घरे आसा बोलो बाके आसो तेरे लुकाए बाटे वो रोसिला पानी रोना बेलो का सुंदर मच संगे खेलो चकड़ा लगी जाए को अरे उठन पाउन मधरुन जाते नानिया माँ वाले गा गा मोर गा चो मलिका गाते बेसुनी दखू पालिया उड़िया पदो पीटी गले का।

जुमो जमो जुमुरा लागली जो बेगारे नांगो साप गुद गुदे बोली देली नांगो साप गुद गुदे तोम गुड़िया पीला गीत गाय बाबे राती राती रो बेरो हुदे रोना बेल काले की चलो डुडू खेलो चकड़ा लगी जाए करे चटाम चाटा नंगरा काड़ी चाटील करे पानी भी रो बरो बालू तो कुमारो पानी भी रो बरो बना रे दंदो पानी भी रो बरो बना आकाश भुवने मेड़ो बंधु आए पकी नहीं ला रोड़े ना

गुर्दो में अभी आप सुन रहे थे भद्री लोकगीत। कलाकार थे मीरी राम बघेल और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे

प्रतिभाशाली गायिका के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मधुर आवाज, अलग अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और अनोखी गायकी से अपनी पहचान बनाई है। जी हां श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय गायिका, संगीतकार और गीतकार सोना महापात्र के बारे में। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत, लोक संगीत और स्वतंत्र संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि

0: आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। सोना महापात्र का जन्म 17 जून 1976 को कटक उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत और कला में थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एमबीए की शिक्षा भी प्राप्त की। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति शिक्षा और कला दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में उन्होंने एक कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया, लेकिन संगीत के प्रति उनका लगाव लगातार बढ़ता गया। अंततः उन्होंने अपने सुरक्षित करियर को छोड़कर संगीत को अपना लक्ष्य बनाया।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। सोना महापात्र ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों के लिए जिंगल गाकर की थी। उनकी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे उन्हें बड़े अवसर मिलने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार राम संपत के साथ काम किया। दोनों ने मिलकर कई संगीत रचनाएं की हैं। सोना महापात्र ने केवल फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि स्वतंत्र संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सोना महापात्र की आवाज में एक अलग पहचान है जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती है। वे नए प्रकार के संगीत को अपनाने और प्रयोग करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हमेशा भारतीय लोक संगीत को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सोना महापात्र ने अपने संगीत करियर में कई सफलताएं प्राप्त की हैं। उनके गीतों का श्रोताओं पर भरपूर प्यार मिला है। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 में आई फिल्म तलाश के जिया लागेना और वर्ष 2014 में आई फिल्म फुकरे के अंबरसरिया गीत के लिए उनका नाम सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए मनोनीत किया गया था।

आज सोना महापात्र के जन्मदिवस पर हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनकी उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना करते हैं। उनकी आवाज़ और कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे।

इस गीत के साथ ही आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है, जो कि केंद्रित था मशहूर पार्श्व गायिका, संगीतकार, गीतकार सोना महापात्र पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए डीएस बोरकर के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

इस गीत के साथ आज का विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत का कार्यक्रम सबरस समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सरग बुंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 एमटी और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 9 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना भूमि मुआवजा मामले और जिला खनिज न्यास डीएमएफ फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। ईडी की टीमों ने रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। यह कार्रवाई भारतमाला हाईवे भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में आरोपी जयप्रकाश गांधी की गिरफ्तारी के बाद की गई। गांधी को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूछताछ के लिए उसे ईडी को रिमांड पर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर और गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सबसे पहले रायपुर से सूरजपुर जाएंगे, जहां पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे गरियाबंद के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की मौजूदगी में सीएम साय दोपहर 3 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में 700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं 4 बजे दर्रीपारा ग्राम में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और नवनिर्मित कचना धुरुआ गोंडवाना भवन का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। सुंदरराज पी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। कोरिया जिले के कटगोड़ी में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने भाजपा नेता के 4-पहिया वाहन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही सरगुजा रेंज के आईजी सहित अन्य पुलिस अमला रात में ही मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रदेशवासियों को जल्द ही चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर राज्य में मानसून का आगमन होने जा रहा है। हालांकि मानसूनी तंत्र के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का

0: समर्पण करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

हाँ तो दादा दीदी मन देखा समय होलो नी मैं तुमके काय सुंदर सुरता करुने था अमरले तो सबले पहिल कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांवकारी सहरिया दादा दीदी सियान सजन मन के मैं सुनाए करे से जुहार और नानी नानी पिला मन के बले मुचो बाटले खुबे खुबे माया। तो दीदी मन और दादा मन तुम्ही तो जाना साहस कि आमचो जीवना ने बल्लो ने सात सिंगार बलुआत हुंचो कितरो महत्व आसे और एदाए का है कि लोग मन नुआ चीज तो चलन के फेर निकराए सोद जसन की हांडी चो हांडी आए हांडी के फेर आने सोद एवे काम ने माटी चो हांडी के माटी चो कुकर आए माटी चो कई ठन जीनिस के काम ने आने से एक ही हम आधुनिक ने बल्लो ने एके आमी देऊ से तो असन ने कहा कि लोग मन पुरखती बेरा जो चीज के हुन मन के जाने सोत और समझे सोत कि ए चीज ने आम चो देह पाए नगत रहे दे और जसन कांस चो चीज आए एके ए थाने पहले कांस चो थाली ने लोग मन भात पेज खाते रहोत एदाए छांड लार प्लास्टिक चो चीज ने खाए सोत तो असन नु आए कि एदाए फिर ए चलन फिर इली और लोग मन जाने सोत कि ए जो चलन आए ए चो खूबे महत्व हो से तो और एचो संग संग का है कि आमी जानू से कि जसन जसन पुराना बेरा सूती कपड़ा है ये सूती कपड़ा आम चो देह ने कसन घाम बेरा नले गर्मी बेरा आम के काम ने ये दे बलते खादी कपड़ा है और कोसा कपड़ा है ये सब चीज के बले चलन ने आने सद बल तो हिसाब ने पुराना चीज एबे फिर चलन ने ए से और लोग मन पुराना ले एके दरुन बाती एक जानून भाती की जाने सोत की आम चो जीवना ने एचो कितरो महत्व आसे और ए थाने काए की लोग मन के खादलो ने जसन की देह पाए बले नगद रहे से और आम के बले जसन फ्रिज के छांड तो राय और माटी चो हांडी आए हुन के हुन थाने पानी पीत राय माटी चो कढ़ाई ने साग सुगी बल चूड़ाउन खातो राय माटी चो हांडी ने दार के बल चूड़ाउन खातो राय एदाए फिर खा संग संग से नी खातो जीनिस के बल पुनः पुरखती बेरा चो चीज के फिर आने सोत जसन कोदो आए कुटकी आए और हरवा आए ये सब आए चीज के लोग मन आने सोत के जाने सोत की पुरखती बेरा आम चो जन दादा सियान मन रहोत हुन मन कितरो ए नगत के खाए सोत एथाने बल्लभू जीनिस बले मिरे से तो आम के पुरखती बेरा चीज के सब पाए के आपे काम ने आंतर खुबे जरूरी हो से तो एदाए संग एचो संग संग मुचो बल तो गोटी आए दादा दीदी मन कि आम चो जोन ए कला और कलाकार जोन कार्यक्रम होए से उन थाने अमका एक ठन नगद नगद गोट बात के धरून एवुआ असनी आजी आमी दादा केलू नायर चो गोट बात के धरून एलू से केलू नायर दादा आप लो दुनिया ने जुग संसार ने कथकली चो ने खुबे नाम कमाला ए दादा के 1992 ने केरल संगीत अकादमी बाटले पुरस्कार बल्लो ने इनाम बले दिला ए दादा केरल कला मंडल ले कथकली सीखला ए दादा चो गुरु चो नाव रहे कुंचू कुड़ुप गुरु कुंचू कुड़ुप ए दादा के गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नेवता दिला पहिल कथकली विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय खोलतो काजे और ए संगीत निकेतन खोलतो काजे आप लोग मेरा कोनी मतलब उन बेरा हुनी कोनी कॉलेज नहीं रही और दादा के असन

0: मेरा जसन आमचो गुरु रविन्द्र नाट्यघर जोन आमचो देश का जे खूब मतलब पुरस्कार मिला रे दादा के सपाए जाने सो ए दादा आमचो जने केलू ना दादा के नेवता दून संगीत अकादमी के खुला तो काजे नेवता दिला और ए चो काजे आज बोले हुन कॉलेज ने लोग मन पढ़ून लिखून भाती कई एक ठन संगीत चो नाव के कमाए सो तो संगत चो दादा ने इकला चो दुनिया ने इन चो नाव दादा चो नाव अमर हुन गेली ए तो रली आमचो तुमचो संगे गोट बात करतो काजे कितरो समय निकरो नामी गोट बात करूंगा और नगत नगत गोट बात के बले सांगवा असनी हिसाब ने और आमचो लगे जहला से आले एके सुनवा देवे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुँचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222266। फोन इन किसान वाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: तो एदाय आमी सुनलो ए नगद जहला के और देखा आमचो जसन नगद नगद गोट बात संगे संगे आमचो लगे गीत चो मोड़रा बले रहुआ है और गीत ने देखा एदाय फिर स्कूल बले खुली और पीला झीला माने स्कूल जातो का जे बल हरिक बले हो सोत मांतर के भी देखुआ कि कोनी कोनी पीला झीला मन नी स्कूल का जातो का जे ठग बल हुआ असन ने आम के ए पीला झीला मन का जे गोटक नगद गीत सुनानो लेनी मन काली ले तिकती का तैयार हुन भती स्कूल जाऊआत। तो असनी आमचो लगे गीत कुरिया दादा अमर लासोत जलदेव और हनुमान चो संगवारी मन आले सुनू एकाए सुंदर गीत के बोले देवे।

ले फेर पिला झिला मन फेर आज गीत सुनून ले काली ले फेर पढ़ुक लिखुक जावा आज कौन कौन नहीं गेला सोता ले स्कूल तो एदा फिर देखा है आमचो गीत चो मोटरा ने तो कैक ठन रंग रंग चो गीत बल रहे से असनी हिसाब ने और आमचो लगे गीत कुरिया दादा अमरला सोत शिवराम नागर संगवारी मन आले ए मन के ठान दियो और गीत के सुनुते भी

तो आम्ही सुनलो ए दादाचो गावलो काय सुंदर माईचो सुमरना के, और ए गीतकुरिया दादा राहत शिवराम नाग और संगवारी मन। तो मैं बोलते रहले आमचो जीवनानी कैक ठन आमी काम बुता करूँ, और जेचो लगे काम बुता नहीं आए बोलो ने मेहनत मसागत करुन भाती आप लोग जीवना के चलाकुला सके, और जेचो लगे हुनर आसे बोलो ने कला आसे उनके नौकरी चाकरी नी मिलो ने बोले हुन मन आप लोग जीवना के कमाकुलाए खाकुलाए सकोत। जसन जेचो लगे बांस कला सीखे से कुन माटी कला चो सीखे से, और जसन मूर्ति कला कैक ठन कला जोन कला चो इतरो भर दुनिया आसे कि जेचो ले आमी बुल्लो ने आम के कई ठन कलाकार मिरुआ। तो असन ने आमी कोनी बल कला के पढ़ाई लिखे ही संग संगे आम चलगे कोनी बल कला चो हुनर होतोर खूबे जरूरी है। एचो काजे आजी चो पीला झीला मन के बले हुनर सिखातोर खूबे जरूरी है। ए बाढ़ती समय ए महंग समय ने आम के नौकरी चाकरी नी मिलो ने बले आमे जीव कलाए ए संसार ने सकूं। तो आम की आम चो कला के आगे बढ़ा तो रार पुरकती बेरा चो कला के आगे बढ़ा तोर खूबे जरूरी वैसे। तो बहन दीदी और दादा मन दखा ये तो रली नगद गोट, और संगे संगे दखा आमचो लगे दादा मन ही लाए दाए आमचो दीदी ऐसे गीत संगे बाजा गाजा के धरुन। तो ये दीदी के आमी ठान दियूं और काय सुंदर गीत के बोले सुनो ते भी।

कला और कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: हां तो दीदी बहीन मन दखा मैं बल सुरता करून तुमच्या संगे गोड बात करतो का जे अमरले तो सबले पहिल घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सब पाए आमचो दीदी बहिन मन के मैं सुनाए करें से जुहार और नानी नानी पिला मन के मोचे बाटले खुबे खुबे मया आमचो दीदी बहिन मनी घर चो काम बुता संग संगे कुटुंब ने बले खुबे अपलो समया के बले दे सोत जसन की कोनी लग बिया बरपन होली बले जाए सोत घर ने कानी कोनी बले कार्यक्रम हुए से बलो ने जाए से सुखो दुखो का एक ठन कार्यक्रम में आमचो दीदी मन बले जाए सोत अरे मन के नहीं गोटो घर चो जिम्मेदारी नहीं रहे सब आए कुटुंब चो सब चो बड़े ले ले धरुन सियान ले धरुन बड़े चो लोग चो सब पाए चो जिम्मेदारी रहे से पीला झीला मन चे बले दीदी मन पूरा काम बुता करे सोत और आज ही समयाने आमचे जन बायले ले की मन दीदी मन रहे सोत उन मन घर चुचाए घरे ने चीनी रहोत घर ले धरून बलों ने पूरा समाज चो काम बले करे सोत तो ये दीदी मन चो इत्रो सोन उठून ले धरून राती सोतो तक इत्रो जिम्मेदारी रहे से और एक ये दीदी मन काम ने आने सोत और आप लो संग संगे को परिवार चो कुटुंब के बले समया देतोर खूबे जरूरी होए से काहे की आमी समाज ने रहतो कोटोक लोग आ और समाज के जानतोर समाज के समझतोर और लोग मन के ध्यान देतोर बल्कि खूबे जरूरी रहे से और संग संग दीदी मन जसन की कोनी बले आ रहा जसन मनुक पीला मन के कोनी काम रली हुन मन समाज ने नहीं जा सत मन तोर दीदी बहन मन जोन घरे रहे सो तो हुन मन बले समाज ने कुटुंब ने जाऊन भाती आप लोग समया के दे सोत और समया के देतोर बले खूबे जरूरी होय से आज ही हमें दूसरे के समया देलू बले पाछे हुन बले आम के समया देऊन भाती हम चो काम ने पूरे ए दे और समाज ने रुन सपाय संगे मिलुन मसुन हरी कुदिम ने रतोराय मन ने कचे संगे डाटा बैरी बले नी संगातोर होय से ए तो रली नगद गोट ए जो संगे संगे और आम चो लगे जहला से आले के बले सुनवा देबे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तले खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरु गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरु गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
0: हाँ तो दीदी बहिन मन मुझे बोलतो गोटे है कि जीवना ने आमी आमीन पीला बेरा नहीं काहे सुंदर कहानी के सुनते रहलू और कहानी सुनून सुनून आम चो आंखी असन झपकुन जाए आम के केबे सक्रिया होए हमके जानुक लाए नहीं मिरे मांतर ए दाए कहानी सुन तो काजे आम के समिया नहीं आए और कहानी सुना तो लोग मन मले नहीं आत मांतर आम चले गए रेडियो तो आसे सुना तो काजे तो ए दाए फेरे आमी सुनो ए रेडियो भीतर ले ए बहिन चो काय सुंदर कहानी के तेबे।
4: जुहार संगवारी मन मचो नाम प्रियमिता पांडे आए और आज ही मैं तुम चो काजे धरुनी ले से गोटो सुंदर कहानी पाठ जिचो विषय आए लालची लकड़हारा और सोना चो टंग्या तो संगवारी मन खूबे आगे चो गोटा।

मदाले दी चो रेटे गोटोक नानी असन गाँव रे हुंचो नाव रे रतनपुर और हुनी गाँव ने हरिया नाव चो गोटोक लकड़हारा आपलो बायले गौरी संगे रहते रहे। हरिया खूबे गरीब रे। हरिया जितरो गरीब रहे उतरो ईमानदार बोले रहे और संगे संगे मेहनती बोले रहे। हरिया चो जिंदगी चो नियम रहे कि बिहाने बिहाने बेर निकल लो पहले उठतो आए और रान बाटे जाऊन दारू बनातो रहे और हुन दारू के बाजार में बिकुन भाती घर का जे काई जाए सामान बल्लो ने आटा दाल मन के घेनुन नेतो रहे। असनी चे जिंदगी चलते रही संगवारी मन फिर एक दिन पता चल ली कि हरिया चोबाइले गौरी के 2 साल ले बीमार होलीस। बीमारी 2 बरख ले हुंचो पीछा शांति जी नहीं रहे। गाँव चो वेद के दखातो के हुन बोलो कि शहर जाऊ पड़े दे और शहर चो डॉक्टर के दखाऊ पड़े दे। मानतर हरिया लगे इतरो पैसा नहीं रहे कि हुन गौरी के शहरे अस्पताल दखाऊ नेतो। इतरो सब होलो बात बोले हरिया के बे शिकायत नहीं करते रहे। हुन रोजे भगवान के इतरो इच्छे विनियायते रहे कि हे प्रभु बस इतरो ताकत दे कि मैं मेहनत करूँ भाती घर चलाऊ सकूँ और गौरी चो बीमारी के बले झटके छंडाऊ सकूँ। और फिर संगवारी मन एक दिन सावन चो महीना रली खूबे झमाझम बरसा एते रली। जसने चे बरसा खिंडी कम पड़ली हरिया आपलो टंग्या के धरून भाती रोजे चो असन रान बाटे गेलो। हुन दिन नदी ने बले बाढ़ एव रहे और बादर मन बले करिया करिया होते रहो। असन लागते रहे जसन एबे फेर बरसू आद बे। ए सब के दखून हरिया मन ने विचार लो कि झटके झटके दारू बनाए दे नहाले फेर मके पानी अमराए दे और फिर उनीचे लगे नदी चोरे ते गोटोक सीसम चोरुक सुकुन भाती घसरू रहे। हरिया उनके दखलो और उनचे ऊपरे आपलो टंगिया मार तो शुरू कर लो। बूटा करते करते पेज बेरा चो समय होली। हरिया पसना ले तर बतर होन भाती थकुन गेलो और हुन जसने चे नदी में पानी पीऊ तो काजे खिंडिक खाले लो उनचो हाथ ने संगाली टंगिया फिसलन भाती घसर ली और सीधा नदी चोपूर संगे जाते गेली। एके दखून हरिया काय के फिर पानी पीवायता हुंचो तो पैरों तले जमुन खिसकुन गेली। हुनके असन लागली कि अदाय हुंचो लगे काही नहीं है। हुंचो सब पूर संगे बहुन गेली। हरिया विचारुक मुरियालो कि ये गोटोक टंगियाचे तो रहे जोन हुंचो बाबाचो समयाले रहे और तो मचो लगे काही नहीं है। अदाय मैं काली के काय ने दारू बनाए दे मैं आपलो जीवन यापन कसन करून करें दे और गौरी के इलाज कसन कराए दे। ये सब के विचारून विचारून हुन नदी चोरे ते मुंड के थापुन भाती बसू रहे और पीला मन असन सुस्कुन सुस्कुन गाकते रहे और गाकते गाकते हुन नदी देवी के बलते रहे कि नदी माता मचो सबके तो तुई धरलीस अदाय मैं काय करवाए दे। हरिया चो तकलीफ के दखुन भाती नदी चो लहर शांत होली और फिर अचानक पानी ले सुनहरा रोशनी निकलली और गोटोक दिव्य स्त्री प्रकट होली। हुंचो हाथ ने गोटोक सोना चो टंगिया रहे जोन बेरसन चमकते रहे और हुन दिव्य स्त्री नदी चो देवी रहे। हरिया ये सब के दखुन भाती आश्चर्य होन गेलो। त्रोच ने देवी आपलो सुंदर स्वर ने पूछली हे पुत्र तुके काय होली से तुय काय काजे असन विलगुन विलगुन गाक्षीस। हरिया आपलो आंसू पोछलो और डरून डरून देवी के सब गोट के सांगलो। देवी एके सुनुन भाती खिंडी मुचकाली और आपलो हाथ ने धरलो सोना चो टंगिया के आगे करून भाती हरिया के पूछली ये सोना चो टंगिया तू चो आए। हरिया एक पल काजे हुन सोना चो टंगिया के दखलो। सोना चो चमक के दखून हुन चो आँख मन बड़े बड़े हों।

0: गेली और हुन बले आश्चर्य होन गेलो। एक पल काजे हुन असन सोचलो कि मचो एक टंगिया आय बले दे, मचो जिंदगी भर जो गरीबी बले दूर होए दे और गौरी चो इलाज बले होए दे। मानतर फिर हुनिचे बेरा हुनचो बाबा चो बल्लो गोट सुरताईली। हुनचो बाबा हुनके बलू रहे कि बेमानी चो बिरयानी ले अच्छा ईमानदारी चो सुखा रोटी आए। एके सुरता करून भाती हरिया आप लो हाथ के जोड़ लो और खाले मुदी करुण भाती बल्लो नहीं माता मैं गरीब आए मानतर बेमाय नू आए। मचो टंगिया तो लोहा चुरली और खोबे बरह हो रली हुन घिसिन जाऊ रली। ये टंगिया मचो नुहाय माँ जल देवी मुस्काली और पानी ने समाउन गेली और फिर ये हार हुन चांदी चो टंगिया के धरुन हिली। हुन टंगिया चंद्रमा असन शीतल और सुंदर रहे। फिर जल देवी पूछली आले सांग फिर ये टंगिया तुचो आए कसन बलून भाती। गरीब हरिया फिर विचार लो चांदी चो टंगिया के विकुन बले हुनचो परेशानी दूर होए दे। मानतर हुन फिर हुनी जवाब के दिलो न कि नहीं माता ये मचो नुहाए और जोन मचो नुहाए हुन थाने मचो काई हक नहीं आए। मचो टंगिया तो लोहा चो रहे एके सुनून भाती जल देवी चो मुस्कान तेज होन गेली। अदाय हुन फेर प्रकट होली मानतर ए हार हुनचो हाथ ने हरिया चो हुनी जंग धरलो बीते लोहा चो टंगिया रहे। हरिया एके दखून भाती खुशी ने झूमन गेलो और बल्लो हो माता यही टंगिया आए मचो यही मचो माँ आए और यही मचो भगवान आए एचो बिना मैं काही नुआए माँ। बलून भाती हरिया हरिक ने कुपुन गेलो और देवी प्रसन्न होन भाती बल्ली कि हरिया तुय सते धन्यास कलयुग ने इतरो ईमानदारी तुय परीक्षा के पास कर ली। हरिया ईमानदारी से सबले बड़े धन आए असन बलून भाती सोना और चांदी चो टंगिया के बले हरिया के देऊन दिली और बल्ली ये तुचो ईमानदारी चो पुरस्कार आए। और फिर जसने के हरिया घर गेलो गौरी ये सबके दखन भाती आश्चर्य होन गेली। फिर हरिया सबले पहला काम तो ये कर लो कि हुन गौरी के सहरे अस्पताल ने उन भाती इलाज करा लो। कसन बल्लो ने गौरी काजे चितो हुन सबले जन परेशान रहे और घरे उन हुन आप लो काजे घर बना लो और बाचलो पैसा ने हुन नानी असन गुटोक दुकान खोल लो। जोन थाने हुन आप लो जे रुख राई मन के कार्टून भाती टेबल कुर्सी और कई जही सामान मन बनाओ मोरिया लो। धीरे धीरे समया संगे हुन चो काम बढ़ते गेली और हुन तरक्की करते गेलो। मानतर हरिया के बै घमन निकल लो रोजे मंगवार दिने हुन नदी रेते जाऊन गरीब मन के भंडारा कराए और जल देवी के धन्यवाद बोले। हरिया चो जीवना के दखुन हरिया चो पड़ोसी सुखिया हरिया के जरूर मुरिया लो। हुनचो नाव तो सुखिया रहे मानतर हुनके सब दुखिया दुखिया बलोत हुन एक नंबर चो ठग रहे और खाली साट कर खोजते रहे। हुन ताकने रहे कि कसन बिना मेहनत चो सौकार बनुक होए दे। हरिया के दखुन हुन जरून करिया हुन जाए। एक दिन जसन तसन मौका मिर्तो के सुखिया हरिया के पूछलो भाई तू मके सते सते सांग तुचो लगे इतरो पैसा कहाँ ले इली। हरिया तो सीधा रहे हुन सब गोट के सते सते सुखिया के सांगुन दिलो। सुखिया चो मन ने तो लड्डू फूटून गेली। दूसर दिन फिर हुन बले अंधार अंधार उठून भाती आपलो टूटलो फुटलो टंगिया के धरून नदी रेते अंबरलो और जानून जानून नाटक करून भाती टंगिया के नदी ने पकाउन दिलो और जोर जोर ले छाती के पिटून पिटून गागोक मोरियालो और हाय रे मचो टंगिया गेली अदाय मैं काय करू मैं बलून बलून गागते रहे। हुनचो नौटंकी के सुनून जल देवी प्रकट होली। जल देवी आगे ले सब जानते रहली। मानतर फेर बले पूछली काय होली तुके काय काजे गागसी। सुखिया नकली आंसू निकराउन बल्लो माँ मचो टंगिया पानी ने घसरली। जल माता सोना चो टंगिया के दखाउन पुछली हे टंगिया तुचो आय कसन बलते सुखिया चो तो लार टपकली हूँ झटके बल्लो हौ माँ यही टंगिया आय मचो मचो तो किस्मत खुलून गेली एके सुनून भाती तो जल देवी चो आई मन रिस ने लाल होन गेली और देवी रिस ने लाल होन बिजली असन चमकुन भाती खुबे जोर ले चिचियाली और बल्ली पापी तुके तो लालच चो काई सीमा नहीं आए सोना चो टंगिया के मचो आए बलसीस के भाई मेहनत नी करीस और फल खा तोर के खुशीस इतरो बल्लो पाछे देवी फेर बल्ली कि जा पापी लालच ने इउन भाती तुई तो आपलो लोहा चो टंगिया के बले छानून दे बे अदाए न तुके माया मिरली और न राम इतरो बलून देवी अंतर ध्यान होली सुखिया मुँह लटकाउन नदी रेटे बसून गेलो अदाय न हुंचो लगे टंगिया रहे और न कहीं काम रहे गांव भर ने थू थू होली हुंचो हुंचो परिवार चो भूखे मर तो समिया इली इतरो नौबत एतो के उनकी समझने इली कि हरिया सत्य सत्य बलते रहे बेमानी चो सौ दिन चो कमाई ले ईमानदारी चो एक दिन चो रोटी अच्छा आए हाँ तो संगवारी मन कहानी के सुनून समझ इलीचे होती कि आम के लालच करतो नुहाय और कहीं चे भले परिस्थिति एवो आम के ईमानदारी चो रास्ता अपनातो रहे और बिना मेहनत चो कहीं चे हो नुहाय आम के मेहनत करने नीचे सफलता मिले दे धन्यवाद।
1: तो ये तो रली कहनी और दीदी प्रमिता पांडे आम के काय सुंदर कहनी के सुनाली और काय सुंदर सुर ने बले सुनाली और सत्य गोटाए की ईमानदारी चो जीवना ले ईमानदारी लो कमाई ले आप लोग देह पाए बल अच्छा हुआ और आम चो ये पुण्य आम चो घर चो आप लोग पीढ़ी के बले ये तोर समिया ने मिर हुआ है तो आम के नगत और सत चो बांटने रेंग तोरा आम के दखुन लोग मन जीवना जियोत असन जीवना के जीव तोर खुबे जरूरी होए से ये तो रली नगद कहानी और दीदी के आमी सुन भाती खूब हरिक भले लागली तो आमचो रेडियो आम के कहानी संगे संगे गीत बल सुना हुआ है तो आमी आले एदाए सुनू ये लखेश्वर बघेल और लखेश्वर खुदराम और संगारी चो गावलो एक आए सुंदर गीत के बले

तो इदाएं आमी गीत के हल्बी गीत मन के सुनलू। अब इदाएं सरासरी दाएं छत्तीसगढ़ी गीत महीन ममता चंद्रा करले सुनू थे भी।

तो सरासरी दाएं मुखी बिदा दियास जा तो पूरे घर दुआर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं सुनाए करें से जुहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि स्वामी की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण।
3: काश्तकार दादा दीदी मन, आज मैं तुमके नड़ेरचो कमानी वाट के सांगे। नड़ेरचो कमानी काजे कम ले कम 1.2 मीटर गड़िया माटी बीती ठान खूबे नंगत रहे से। संगे संगे हुन ठान चो पानी धर तो सकत बोले नंगत रहतो राय। खाले बाटे ठस पखना बीती पानी थेबलो खाले चो भूई आरु आगर चिकन माटी नड़ेर कमानी काजे नंगत नी रहे। नड़ेर चो कमानी काजे पानी होतोर नंगत वर्षा होतोर आरु सिंचाई बोले खूबे जरूरी आए। नड़ेर चो नंगत किसी मन के सुना। पहिल किसिम आए केरा बस्तर, जोन ठान ने आगत ले नरेर कमानी नी कर सोत असन ठान काजे ये किसिम खूबे नंगत आए। ये किसिम सूखा सहनशील किसिम आए। ये किसिम ने गोटोक गच ने 85 ठान फर फरे से। फर ने पानी 330 मिलीलीटर तक रहे से और पानी स्वाद बीती रहे से। असनी दूसर किसिम के बले आमी धरुक सकूं। दूसर किसिम मंचो नाव मन के मैं सांगून दें से IND 051 IND 039 कल्प मित्र चंद्र शंकरा लक्षदीप आर्डनरी। ये सपाय नड़ेरचो किसिम मनात। ये सपाय किसिम संगे नड़ेरचो उपजन के आगर करतो काजे शीतकार बेरा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ले कम होन गेले सिंचाई आगर करुक लागे से। संगे संगे जेठ बतर ने अप्रैल ले जून महीना सिंचाई के कम नी होक देतो राय और राती बेरा कचरा काड़ी मन के डसाउन कोमला करतो राय। बीच के छाटून भाती नर्सरी ने जून जुलाई महीना ने लगाउक पड़े से। फिर हुता गोटोक बरख ने तैयार होलो बूटा जेथाने गोटोक ले 6 ठान पाना होली से बूटा आधा भीता महा मोटरो हो और पाना फुटू रहो असन बूटा मन के लगातो राय। एचो कमानी काजे भूई के साफ सफाई करुक लागे से। डेंग थाक होय से जाले सम बनाउक लागे से। फिर 1 मीटर लाम ओसार आरु गड़िया खोदरा खोड़ूक लागे से। ये काम अप्रैल महीने करतो राय तेबे खोदरा ने घाम पाए दे और कीड़ी माकड़ी बीमारी चो नानी कीड़ी घाम पाउन मरुन जादे। फिर जून ने खोदरा के माटी आरु नंगत सरलो गोबर के मिसाउन भरतो राय। जसन सिंचाई काजे सुविधा आसे बल्ले रोपतो काम बरसा ले 20-25 दिन पूरे बल्ले होक सके। जेचोले वर्षा मूर होतले बूंद नंगत बसुन रहे दे। मांतर लेख करतो राय कि बूटा मंडालो ठान ने पानी नी थेबो। नड़ेर बूटा के 11 हाथ लामी लामा मंडातो राय। चौकोन हिसाब ले मंडाले 2.5 एकड़ ने 177 ठन बूटा मंडा तोर हो सके। बूटा मन के मंडा ते खन खूबे राखा जागा करुक लागे से। रोप तो बूटा के आगर घाम ले बचा तो काजे छाए देतो राय और सिंचाई करते रहतो राय। बरसा बेरा पानी निस्का तो नंगत हिसाब रहतो राय और शीतकार बेरा बूटा के बचा तो काजे सिंचाई करते रहतो राय और बूटा लगे लगे कुमला करते रहतो राय। बूटा लगे चो ठान ने लाटा बूटा नी रहुक देतो राय। नड़ेर बूटा चो नंगत बाढ़ती काजे वर्षा मूर हो तो पहिल 40 ले 50 किलो गोटोक गच हिसाब ने जैविक खत दिलो ने नंगत रहे से। गोबर खत नहले कंपोस्ट संगे 5 किलोग्राम लीमचो खत के लगा ले माटी सुधरे से और पानी धरतो सकत बाढ़े से चे। संगे संगे स्त्रवण नाव चो बीमारी ले बले बूटा बाचे से। नड़ेर बूटा ने 200 ले 300 लीटर पानी गोटोक बूटा हिसाब ले 4-4 दिन ने जेठ बत्तर ने देतो राय। शीतकार बेरा 1-1 हफ्ता पाछे पानी देउक लागे से। पानी कम रलो हिसाब ने नड़ेर गच्चो चारो कुती 2 फीट ले 4 ठान भीने भीने ठान ने टपक सिंचाई हिसाब ले 60 ले धरून 80 लीटर पानी रोजे दिना हिसाब ले दिलो ने बले होक सके। नड़ेर बूटा ने तना श्रवण बीमारी जौटे से। ये होलो ने गच ने खंडिया खंडिया महा होन जाए से। हुता ले लाल धमसिया महा रंग बोय से जोन सुकून भाती करिया होन जवाए। ये जुलाई ले नवंबर तक होय से। ए रोग होलो ने बूटा मरुक सके। ए चोले बचा तो काजे बरसा मूर होलो बेरा गोबर नहले कंपोस्ट खत संगे 5 किलोग्राम लीम खली गोटोक गच्चो हिसाब ने रोजे बरक देतो राय। रोग होन गेलो ने सबले पहिल करिया लसा के छेनी संगे काटून निस्काउन देतो राय और हुता ट्राइकोडरमा विरडी एके लिपुन देतो राय। असन होलो ठान ने बार्डो पेस्ट बल्ले 100 ग्राम तूतिया और 100 ग्राम चूना के 1 लीटर पानी ने घोरून लिपलो ने बले गुणकारी होय से। गोटोक रोग होय से शिखर अवरुद्ध। ये रोग होलो ने पाना मंचो पूरे बाट कोचमलो महा पाना झोपा ने निकरतोर पाना चो पूरे बाना दखा देतोर पाना कम होतोर दखा दे से। ये रोग माटी ने बोरान जीनिस कम रलो ने होय से। एक आजे माटी परीक्षा करालो ने माटी ने बोरान जीनिस कम दखा दिलो ने बरक कार ने 2 फरवरी ले मार्च आरु अगस्त ले सितंबर ने 50 ग्राम सुहागा गोटोक गच्चो हिसाब ने देतो राय। दादा दीदी मन, ये रहे नड़ेर कमानी चौवाट। असन हिसाब ले कमानी कर लो ने तुम्ही नड़ेर चो खूबे उपजन पाउक सकास।
2: कृषि स्वामी की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर की धूप में छांव का एहसास है, हवा की लहरों में कोई मीठा सा राग है, सूरज की किरणें जब बादलों से मिलती हैं, मन की वीणा पर मधुर धुनें खिलती हैं। कभी धूप मुस्कुराए, कभी छांव गुनगुनाए, ये सुहाना मौसम दिल को गीत सुनाए। प्रकृति की गोद में हर पल खास लगता है, दोपहर का ये नज़ारा दिल के पास लगता है। जी हाँ श्रोताओं, दोपहर की धूप, छांव और मधुर गीतों के साथ हम लेकर आ गए हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो सखी तरुणा मौर्य का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म हम हैं हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत। स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने, गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं निखिल विनय और गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, जगदीश, गोविंदा देवांगन, विशाल, पायल, अक्षय कुमार देवांगन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता घायल, सानिका घायल, गजानन घायल। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावांडकर, सरिता, प्रिंस, एकांश गावांडकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन गावांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गावांडकर, सुमित, ध्वनि गावांडकर। जिला कोल्हापुर से अतुल गौतमी धमदीना, अरुणा काले, एडी कामले। कोल्हापुर से ही हैं तुषार कुरणे, प्राशिक कामले, एकता कामले, मेघना कुरणे, उत्कर्षा कामले, अरुण यलगुड़कर। गणेशपेट पाथरडी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल, अमृत और सुवर्णा शिंदे। रुआबांदा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, शेया जैन, सौरभ जैन, शुभम और शौर्य जैन। श्रृंगेरीशी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधल्ले, आरती जोंधल्ले। जलगांव सामनाथ से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्वनी भूतेकर। जलगांव से ही हैं वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी। औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भाव सिंह पुरा। औरंगाबाद से मेघराज जीवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर। ऊपरकोट मोहल्ला चोखू नदी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। रोकड़ेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभी मंजूषा गौतम इंगोले, नामदेवराव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित, सोनू, मोनू ठोके। झुमरी तलैया से छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर, सुभाष, अंशुमन और ओवी। आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म है साजन चले ससुराल। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गीदम रोड जगदलपुर से टी राज राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, मनीषा श्रवण राव, आनंद राव, नानू राव, रोहिणी राधिका। पलारी रोहांसी से डगेश्वर राम साहू, अलका जानवी साहू, नूतन साहू, घनश्याम साहू। गणेश धाम पुरसुली बालोद से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये। चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण भाव खड़ से, रक्षाताई खड़ से, ललिता संजना खड़ से, गणेश और कार्तिक खड़ से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वीएस महोबिया, कमला महोबिया, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय, नंदिनी महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया। बलोदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, मंजली गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरैसा अहमद फूलवाले। कापसहेड़ा नई दिल्ली से आमना नशरीन, लखमीनिया बेगूसराय से एकलाख अहमद फूलवाले। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत, युवराज राउत। हरदेव लाल पारा वारसिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। अगला नगमा हमने लिया है फिल्म बेताब से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर की। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी। मौसीकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, अफिया खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। राजनगर चांदनी चौक मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार। छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात गुप्ता, अरविंद गुप्ता, मंटू गुप्ता, निक्की गुप्ता। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता। वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैशर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे। जरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी, रजनी कानिरे, कार्तिक, युवराज। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रूनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी। ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारे, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे। भोकरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से मुसर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी,

रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, दशरथ प्रसाद यदु, मनोज कुमार साहू, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादीक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। आइए आपकी पसंद आपको नजर करते हैं।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में सुनिए फिल्म हम हैं राही प्यार के का ये गीत। शब्द रचना समीर की, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को चाहा है आप सभी ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पप्पू छोटू सेन, लता पूजा सेन। बिलासपुर से छन्नू लाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता रामायण श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नंदिनी नामदेव। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रीश गौहर, वंदना गौहर, मयंक, तन्वी गौहर। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित, वैभव मट्टू। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव। हटौद बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचना मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बिच्छू से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, आमोल मानकर। हिप्परसौगा तालुका औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनवी, शाकिर शेख, इस्लामबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सीमा शेख, सानिया शकील पठान, बिस्लामबी शेख, गदर शेख, नीलोफर शेख। तालुका बिलोली जिला नांदेड़ से चांदनी आयुब सैयद, आणीबाल, राजे अमन सैयद, माहिरा सैयद। हतकीरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेलसपुरिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, ऋतु सिंह।

साजदा रानी हिना कौसर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए फिल्म आशिकी 2 का ये गीत। नगमा निगार और मौसीकार हैं मिथुन और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुढ़ाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। जाबरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन जोशी, संजय आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणी हुन गणेश हारगांवकर। पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, आरजू जाजूरिया। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशा नारंग। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, अलकबीर, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। किकिरमेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, कोमल नेताम। जुनवानी दुर्ग से सूरत रमेश साहू। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा। आशा, नीरज, निलेश, अंजलि शारवा।

ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति छाया बंछोर। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि शनि रियांश, कान्हा आदित्य देवांगन। बम्हर चाटीडीन से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, मिल्की देवांगन, मीनाक्षी निधि देवांगन। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, रमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, आहिल खां, जिशान खां। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और बिमला अनीजा। आइए आपकी पसंद आपको नजर करते हैं।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक एक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000

0: हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए इज कमिटेड। एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और

0: राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
7: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
8: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
9: मंगल पांडे
10: जिंदाबाद,
9: मंगल पांडे
10: जिंदाबाद,
9: इंकलाब
10: जिंदाबाद,
9: इंकलाब
10: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
11: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
12: भारत माता की जय,
13: भारत माता की जय।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
14: अरेस्ट करो,
15: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
16: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tom, Balde Cove, T. Kona Manta High, Durant Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी,
2: सैनिक
4: अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को

0: मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई, लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरिनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भईल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
1: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
1: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
6: माँ,
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
6: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
6: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
1: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
6: अरे ये मारा।
1: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
6: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
6: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
7: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट।
1: माँ,
7: ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
8: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: हट
8: रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी,
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो,
1: मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
5: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं।

0: रखी है।
1: अरे बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बाल को छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
1: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा,
4: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
4: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
4: पापा। पापा।
6: हाँ बोलो बेटा।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
6: कौन घुसा है?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
4: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।
4: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं। बचाओ
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना, सबकी जान बहादुर
0: है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया गया। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीडियम वेव पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ बहुत गर्मी है,
2: इसीलिए हमने ऐसा बोला।
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है,
2: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले थे, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए, कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
2: बिल्कुल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है,
2: उसका उत्साह
1: बढ़ा देते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं, है ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कहीं कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
2: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ
2: जी,
1: वो गागर में उड़ेल देना है।
2: बिल्कुल।
1: तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
2: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
1: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
2: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
1: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब वो उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियां फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि इसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 से यह दिवस घोषित किया था और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ममता जी जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते पे गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना, लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया, तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम, तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं, और पानी एकदम स्वच्छ होता है क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहां पर लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर है वहां हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी, बाल्टी वगैरह रख दी, और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम
0: बचपन में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया,
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
0: तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में, हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था, तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं, हल्का हरा।

0: कलर पहने और वो सूती साड़ियां हो जो बहुत अच्छी लगे, और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
1: सही बात है।
0: तो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियां ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहां पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वही राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
1: मतलब काफी मेहनत लगती है और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों।
1: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
0: जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है, और बिंदियां बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सवों पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है,
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें

0: बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम, और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी, और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
5: बिल्कुल,
4: है ना,
5: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता।
4: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
5: बिल्कुल,
4: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है, और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
5: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
4: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
5: लिखना चाहिए,
4: लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है। तो
5: जी बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी, कि लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। बाकी सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखते
4: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
5: बहुत
4: है
5: ईमानदारी से
4: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता
5: नहीं।
4: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं अपनी तारीफ तो उससे कोई मतलब नहीं होता सच को सच की तरह लिखें झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था
5: तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया
4: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है बिल्कुल सही है डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
5: उसका
4: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं कागज पर चमकते हैं तो वो बात निराली होती है लेकिन न से तो बेहतर है कुछ तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं
5: बिल्कुल
4: और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है
5: बिल्कुल और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था मुझे क्लास और घर के दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है
4: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है प्रेरणा मिलती है तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए हमें आपको भी लिखनी चाहिए
5: लिखते
4: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं, लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताइए जा सकती है, क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर, राज को राज रहने,
1: राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला, रसोई, मैनेजमेंट, 6 लोग, कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: तो
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, तो डायरी लिखना छोड़ दिया है। भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम
0: है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूं तो एक एक दिन का हाल दर्ज है, जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं।

0: पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगी बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
1: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरीके से। और हमारे एक साथी लिखते हैं पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखे पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: और अब देखिए डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं।
2: हाँ।
1: तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहां इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो।
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम। हाँ। और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं।
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, पेशावन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए।
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
0: जी, जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना, वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
0: पढ़ाई मिलती कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहां बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहां अगर गए हो कभी या जाने का मौका मिले आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
1: हाँ वो है।
0: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी जाता ना कि सच को हम उसका सामना करने बड़ा कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहां चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया।
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात। बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्मा गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
0: आइए।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूं कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूं बचपन से, अब शायद नहीं हूं, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूंगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें है ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने वाले, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहां जा रहे हो यार खेलते हैं ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी यहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: विजय भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे, और जाएं कहाँ, सड़क पर तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में, और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए, और एड्रेस जाके वहां फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूं कि किस्मत बड़ी चीज है, कहां पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपेट्री का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जेएन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपेट्री चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपए मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे। 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 × 18, 18,000 में इतना इतना इतना, तो मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपए मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं कि हाँ अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। कौशल साहब ने आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे तो पहले वो लोग 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पर। 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह होगी 4,000, तो 12 × 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए

0: और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है।
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे।
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी है, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसे ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया, फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहां चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मानसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी।
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूं। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मानसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूं या
1: आपसे मिला नहीं, और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूं। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूं और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
0: कहां दिया था आपने? बॉम्बे में?
1: बॉम्बे में।
0: तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
1: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है, कि नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं। शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी, तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया, तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया मतलब 1.5-2 घंटा, मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कि एनी वे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी। चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन एक डेढ़ घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
0: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आप?
1: हाँ, हाँ, उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो एक डेढ़ घंटा उनके साथ रहना हुआ।
0: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये?
1: हाँ, ये सब बताया तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
0: कभी कभी ये भी होता है ना कि कई कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
1: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं। हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं। वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया जितना समय उन्होंने दिया। यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बंबई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूं। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो, ये सब करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
0: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
1: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
0: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
1: दिल्ली में। और
0: उसी में आपने पहली बार फिल्म कैमरा फेस किया?
1: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका है। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
0: भोपाल एक्सप्रेस।
1: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
0: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया, दुबे जी वाला।
1: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
0: जी।
1: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
0: जी,
1: उसमें दो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
0: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
1: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
0: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
1: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
0: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
1: क्या बात
0: कही।

0: के लिए मिलता जहां पे मैं कुछ कह सकूं।
1: ये तो आप मानिए कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं कि बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आता रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी एक फिल्म है जो

0: को लेके इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
1: क्या फर्क कुछ महसूस किया इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों से?
0: तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप, वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
0: हाँ
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है, सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म। तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लाप, इसकी शूटिंग चल रही है, बेस्ट इज बेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्म है, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए जाने हमारे आज की सभा और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जाने आज के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आज शाम 6:30 से मीडियम वेव पर आप सुनेंगे इंग्लैंड के हेनिंग्ले लीड्स स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट

मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के तुर्की सरकार नक्सलीड़ा तुपाए ता जवाब तुपाए ते ने इत्ता और इंजे माटा ता जवाब माटा थे ई अमता श्री शर्माल के तुर्की मुख्यधारा ते मल्स वक्त और नक्सलीड़ पुनर्वास तले नरगे कोशिश बुता आयमता और के तुर्की जोन लोर नसबंदी नक्सलीड़ की किस्मत और नसबंदी खोला कियान बुता आयमता कार्यक्रम तगा पांच जन ने तोर संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी तोर अध्यक्ष शशांक शर्माल वह तोर तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक राजीव रंजन प्रसाद आर रचना नायडू लिखा कित्तोर मुसल कालाम तीन उर्सोरेन 15 जून तीन छत्तीसगढ़ सभ्य टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान आर गुप्पा जीवाल अभ्यारण पर्यटक लोक में दे बंद की सी तोड़ू इद सभ्य संरक्षित गुप्पा क्षेत्र इंजे 1 अक्टूबर एवना बंद मंता प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण पांडे के तोड़ की वर्षात मुसूर तमुन ने टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण किन बंद की इन तोड़ू उन अक्टूबर एवं प्रदेश गुप्पा क्षेत्र पर्यटक लोर की दाया प्रतिबंध मनता ये मुंडी अचानक मार टाइगर रिजर्व उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व बारनावा पारा वन्यजीव अभ्यारण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तसंगेन प्रदेश तसोबे अधिसूचित अभ्यारण आर संरक्षित वन क्षेत्र शामिल मिंदे श्री पांडे केत्तोर की वन्य प्राणी सप्ताह तमोकते 2 अक्टूबर तीना जंगल सफारी और वेंट पर्यटन जागा किन पर्यटक लोर मैदे खोला किन तोरू मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ता 14वां चरण ता मुदुल मूर 15 जून तीना अत्ता इदम बस्तर संभाग ता 7 जिला बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर कांकेर आर कोंडागांव ता संगेन गरियाबंद कबीरधाम आर खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला ता संवेदनशील नाटेनगर में इद अभियान चलेम आयमता अभियान तगा राज्य ता 36 विकास खंड ता 697 उप स्वास्थ्य केंद्र तहल काते वायनाव 2474 नारनद सर्वे आयन निंदे इत अभियान ते कम से कम 16,20,000 मानेरा मलेरिया जांच कियान लक्ष्य निंदे अभियान ता मैदे स्वास्थ्य विभाग ताकेड 2063 सर्वे दल त गठन की तोड़ू और नार नार आर लोना लोना अंज एड़क पैत्तोर सूरता कीन तोरू जरत अतके तुरते जांच किट संगे मलेरिया ता जांच कीन तोर और मलेरिया एड़क मत के तुरते इलाज की तोरू इदे न संगेन कोंडे की मलेरिया ते बचेम आयले उपाय वेंट के तीतोर स्वास्थ्य विभाग ते हिसाब ते वर्षा 2015 ता तुलना ते वर्षा 2025 ते मलेरिया एड़क ते कम 80% कमी वत्ता इदाम अभियान ते पेकोड और लेयर की सुरक्षा तले वेंट नर्गे दियान तास तोरू इदेन ले स्कूल छात्रावास आश्रम फोटा केबिन और पुलिस कैंप शिविर नगा वेंट अड़के अड़के टीम बना कि ताव मिंदे स्वास्थ्य विभाग तोर कोंडे किंसेंगे गुवार की तोड़ की सर्वे दल तोर नार तग लोत तग वत क्या चोन और जांच किया नगा संग ई मोटू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए मेडिकल ता स्नातक पाठ्यक्रम तक भर्ती तमय दे वेंडे आयनक परीक्षा प्रवेश पत्र जारी की इत तोड़ू इदेन एनटीए ता वेबसाइट तिना डाउनलोड किया पर दितोर इत परीक्षा वायनत 21 जून पेयाल 2 बजे तिना आता इत नडुम एनटीए विद्यार्थी लोक पैसा मल्स यान लय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया मुन्ने तम व बैंक खाता जानकारी सत्यापित किया ले सलाह इत तोड़ू नीट परीक्षा तीन पुलिस छत्तीसगढ़ ता परीक्षा केंद्र नगवेंड सुरक्षा ता नर्गे बूता की अम तोड़ इदे बूता ते कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा अत्तद 12 जून ने टेन परीक्षा केंद्र तग अंज तैयारी बूता कीन उड़ तोड़ू अचूट अधिकारी लोर परीक्षा आयोजन तले जारी कित्त निर्देश की नकल नल पालन किया लय के तोड़ू कित्तद मिंद की इत परीक्षा तमय दे जिला तग रेंड परीक्षा केंद्र बना कित्ता मिंदे विश्व रक्तदान दिवस नेटेन 14 जून ते छत्तीसगढ़ तग नर्गे कार्यक्रम आसमत्ता भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ता छत्तीसगढ़ इकाई टाकेट लोक भवन तग आसमत्ता समारोह तग राज्यपाल रमेन डेका 30 नेत्र दान की तोड़ मानेर किन सम्मानित की तोड़ू अगान 241वीं बस्तरिया बटालन तोर सेड़वा तगा मंदान वाहनी मुख्यालय तगा नेत्र दान की अनद शिविर लगा की मत तोड़ू शिविर तगा बटालियन तोर 24 अधिकारी आर जवान लोर नेत्र दान की सेवा काम ता संदेश इत तोड़ू डिमरापाल ते बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा कॉलेज ते टीम तोर शिविर तगा संग इत तोड़ू अचूट जवान लोर अटेके नेतुर दान आर समाज ते जागरूकता प्रशिक्षण क्रिया

की तोड़ू। बस्तर ते नरगे गुप्पा नगा और सीमा क्षेत्र ता नार अलका नगा गुप्पा जीवाल की नदराका किए लय मान्यड़ आड़ गुप्पा जीवाल संघर्ष किन कम किए लय बस्तर वन मंडल और बूता मोदोल किता इत बूता ते गुप्पा क्षेत्र ते मंडान चुआ नद चरुडी लोहा तद जाली वाटी तोड़ू इत बूता मुसूरता मुन्ने की तोड़ू। वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता अलखेतोड़ की बस्तर वन मंडल तगा 29 चुआ की मेह की अदन सुरक्षित बना की अम तोड़ विभाग तोड़ नार तोड़ केतोड़ की और क्षेत्र ते ईसुनता बेदेवंड चुआ मत के अदेन सूचना उभय वन परिक्षेत्र आपिस तगा के तैनात। जगदलपुर ते मंडान क्रांतिकारी डेबरी धूर उद्यानिकी कॉलेज आड़ अनुसंधान केंद्र परिसर तगा 13 और 14 जून नेटेन बस्तर आम महोत्सव आसमत्ता इपंडुम तगा बस्तर तसंगेन छत्तीसगढ़ त नरगे क्षेत्र तिना वक्त और किसानीर मरकानाद 2000 दीबे विजा तचमत तोरु महोत्सव तगा पारंपरिक उन्नत आर हाइब्रिड विजेता मरका ने कायमत्ता इद मौकते सांसद महेत कश्यप प्राकृतिक इसापते तियार अत्ता मरका किन देश दुनिया ते पहचान इयान माटा के तोड़ु अगन कलेक्टर आकाश छिकारा मरका महोत्सव तगा लगा कित प्रदर्शनी तीन उर्स मरका नद नरगे देशी आर हाइब्रिड विजा किन ने कह मन की तोड़ु कार्यक्रम तगा जैविक खेती आर मरका ते मौला गर्सना जानकारी वेन इत तोड़ु। बीजापुर जिला ते नैमेड तगा मंदान शासकीय कोसा बीज केंद्र तगा 10 और 11 जून नेटेन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आर जागरूकता कार्यक्रम आसमत्ता केंद्रीय रेशम बोर्ड ता क्षेत्रीय रेशम उत्पादन आर अनुसंधान केंद्र जगदलपुर ताकेट आसमत्ता कार्यक्रम ते वैज्ञानिक लोर हितग्राही लोर कोसा उत्पादन रोग प्रबंधन पूर्ण तरीका पंटा पेड़सी किया नान नरगे बूता किन के तोड़ कार्यक्रम तगा रेशम केंद्र ते जुड़ेम अत्तोड़ समूह तोड़ 17 सदस्य लोर कम ते कम 15 लाख रूपये नत कोसा वम तोड़। कोंडागांव जिला ते ओडार गांव तगा पुलिस ताकेट सहयोग चौपाल लगा कि तोड़ू उप पुलिस अधीक्षक स्निग्धा सलाह में आर थाना प्रभारी गोपेंद्र पटेल नद उपस्थिति ते आसमत्ता इत चौपाल तगा सरपंच पंच गायता पुजारी आर नाटेन और वासमत तोड़ अचूट अगा पुलिस अधिकारी लोर नार तोर्क नाटेन तिपाल कीन पुलिस वे तोड़ू इद मौकते पुलिस अधिकारी नाटोर कीन साइबर ठगी ते बचेम आयला जागरूक कि तोड़ू इदेन संगेन मुत्ते आर पिकी कीन सुरक्षा पाक्सो एक्ट आर सर्प ते दायवाया नियम की न जानकारी इत्तोड़ू। सुकमा जिला तोर लेयर किन प्रतियोगी परीक्षा की नद फ्री ते तैयारी किया लय सक्षम कोचिंग तग प्रवेश तलय वायान 25 जून ते परीक्षा आंता मनमत्तर और 23 जून एवना सक्षम कोचिंग आर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र तगा आवेदन फारम जमा किया पर दी तोड़ू। जिला प्रशासन ता उद्देश्य जुई मंदान क्षेत्र तोर फोड़ेम अत्तोर लेयोर किन अर्थोसिस और किन पीएससी व्यापम बैंकिंग आर आउरवेन प्रतियोगी परीक्षा न तैयारी किए नद मिंदे चंडीगढ़ तगा 11-13 जून एवं आसमत्ता ओपन नेशनल जूडो प्रतियोगिता तगा कोंडागांव ता हेमवती नाग कांस्य पदक जीतता।

0: आकाशवाणी के ही जगदलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीना, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे

0: सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरिया जिले के नौगई गांव में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता अपने कुछ साथियों के साथ बीती रात सोनहत गए थे। इसी दौरान नौगई गांव में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। इस दौरान भाजपा नेता गाड़ी से निकल नहीं पाए और जलकर उनकी मौत हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे 3 व्यक्तियों को अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत रायपुर लाते समय हुई है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान शिवनंदनपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। गौरतलब है कि 21 जून को निर्धारित नीट UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। इधर नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज रायपुर दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर बिजली की दरों में की गई वृद्धि, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जांजगीर में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बिजली दफ्तर के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। वहीं बिलासपुर में भी बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर

0: विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। राज्यपाल रमन डेका ने रायपुर के कमल विहार स्थित गजराज बांध को जलाशय के रूप में विकसित करने की पहल की है। ये बांध लगभग 230 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस संबंध में राज्यपाल ने आज लोकभवन में रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर विनोद पांडे से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि गजराज बांध को पेयजल भंडार के रूप में विकसित करने से रायपुर शहर को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने महापौर से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर इस दिशा में कार्य करने को कहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच डुअल जॉइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। डुअल जॉइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र आईआईटी भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। सुंदरराज पी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे हैं। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्ध जनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण कल 18 जून को किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सड़कों पर मवेशी छोड़ने की बढ़ती समस्या को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सड़क, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विचरण करते पाए जाने वाले गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं को स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पशुपालकों, डेयरी संचालकों और किसानों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को घर या निर्धारित स्थान पर ही रखें और सड़कों पर ना छोड़ें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा कल 18 जून को सुबह 11 बजे दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित बाल गृह परिसर में महिलाओं के मामलों के निराकरण के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के उरकुरा रायपुर डाउन लाइन पर खमतराई स्थित संपार फाटक आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण आज सुबह से लेकर 19 जून की रात 10 बजे तक बंद रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के बिरकोनी गांव में एक युवक ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। नारायणपुर जिले में बीएसएफ की टीम ने विशेष सर्च अभियान के दौरान मसपुर गुडरापाल के जंगल में माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इनमें बीजीएल लॉन्चर और राइफल शामिल है। और जांजगीर में राइस मिल से धान की चोरी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। कोरिया जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुए हमले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होंगे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

18% टैक्स की सीतोड़ मुन्ने अग 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तकरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सीतोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पड़ो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताए बदलावायो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर

0: के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचए संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असल ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
2: दादा दीदी मन तुमन सबके दादा जोकाल बाटले जोहार। मैं ता कविता पाठ गाँव को लाइले से मचो कविता पाठ के सुना। काय बल्ल ने रान रलो ने तो हम छो जीवना है। रान रलो ने हमके पानी मिरे दे लहरा मिरे से हुनी चो ऊपरे गोटा कविता लिख ले से हमके सुना। रान रलो ने आम चो जीवना रान के बचावा दादा मन रान के बचावा रुके नी गुंदवा हमी बूटा लगावा दादा मन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा। रान रलो ने लहरा पानी आम के मिरे से रान रलो ने लहरा पानी आम के मिरे से रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से पीला बेरसो बांस झूलना रान ले मिरे से दवाई दारू पान पाक रुकले मिले से फर पाक चो बूटा मी घरे लगावा फर पाक चो बूटा हमी गरे लगावा। रान रलो ने आम चो जीवना रान के बचावा दादा मन रान के बचावा रुके नी गुंदवा मी बूटा लगावा दादा मन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा। नांगर जुवाड़ी डोरी दावा रान ले मिरे से नांगर जुवाड़ी डोरी दावा रान ले मिरे से गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से भाजी बास्त बोड़ा फुटू रान ले मिरे से भाजी बास्त बोड़ा फुटू रान ले मिरे से डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मिरे से डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मिरे से रान ने आईग बारवा नहीं आईग बुतावा रान ने आईग बारवा नहीं आईग बुतावा। रान रलो ने आम चो जीवना रान के बचावा दादा मन रान के बचावा रुके नी गुंदवा मी बूटा लगावा दादा मन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा। महू टोरा पाक फर रान ले मिरे से महू टोरा पाक फर रान ले मिरे से दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मिरे से दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मिरे से आईग बार तो काजे दारू रान ले मिरे से आईग बार तो काजे दारू रान ले मिरे से पिंत तो कपड़ा लाता बले रुक ले मिरे से पिंत तो कपड़ा लाता बले रुक ले मिरे से जन्म मरण रुक संगे आए रुक के बचावा जन्म मरण रुक संगे आए रुक के बचावा। रान रलो ने आम चो जीवना रान के बचावा दादा मन रान के बचावा रुके नी गुंदवा मी बूटा लगावा दादा मन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा दादा मन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा। दूसर कविता है एक बाले सुना कसन बाले गागे से। बीस बीता जुगे मंद खाऊआ है उन चो पर कविता के लिखने से एक सुना मुचो भाग फूट ली आया मधा मीर लमो के मुचो करम फूट ली बाबा मधा मीर लमो के मधा मीर लमो के गोटोक ठगरा मीर लमो के मधा मीर लमो के गोटोक ठगरा मीर लमो के मुचो भाग फूट ली आया मधा मीर लमो के पूरे नंगत सीधा रलो ए बे होलो टेड़गा पूरे नंगत सीधा रलो ए बे होलो टेड़गा दुई चिपड़ी भीतर गेले बागबन आए लड़गा दुई चिपड़ी भीतर गेले बागबन आए लड़गा लटा फांदा काय झंझट काली के पेट लो मके लटा फांदा काय झंझट काली के पेट लो मके मोचो भाग फूट ली आया मंधा मीर लो मोके मोचो करम फूट ली बाबा मंधा मीर लो मोके गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला घरे मुठेक चाउर नी है सगा बले इला घरे मुठेक चाउर नी है सगा बले इला बाबा दिलो गोटोक भांडो आहिन के बले बिकलो मोचो भाग फूट ली आया मंधा मिरलो मोचो करम फूट ली बाबा मंधा मिरलो मोके मंधा मिरलो मोके गोटोक ठगरा मिरलो मोके मंधा मिरलो मोके गोटोक ठगरा मिरलो मोके मोचो भाग फूट ली आया मंधा मिरलो मोके बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो रन भन घर के कर लो मुंद खाओ को सीख लो रन भन घर के कर लो मुंद खाओ को सीख लो इज्जत जमाए भटने गेली लाज नी आए तुके इज्जत जमाए भटने गेली लाज नी आए तुके मोचो भाग फूट ली आया मंधा मीर लो मोके मोचो करम फूट ली बाबा मंधा मीर लो मोके मंधा मीर लो मोके गोटोक ठगरा मीर लो मोके मंधा मीर लो मोके गोटोक ठगरा मीर लो मोके मोचो भाग फूट ली आया मंधा मीर लो मोके घरे रांदा नी आए मंतर दुआरे भैंसा बांधा घरे रांदा नी आए मंतर दुआरे भैंसा बांधा ताड़ी सलपी नी छांडे नी छाड़ू आए लांदा ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा मंद बले से ए मनुक मके छांड मके मंद बले से ए मनुक मके छांड मके नाले मरहा भटा ने उन भाती माई छांडे दे तुके मोचो भाग फूट ली आया मंदा मिरलो मके मोचो करम फूट ली बाबा मंदा मिरलो मके मंदा मिरलो मके गोटोक ठगरा मिरलो मके मंधा मिरलो मके गोटोक ठगरा मिरलो मके मोचो भाग फूट ली आया मंधा मिरलो मके मोचो करम फूट ली बाबा मंधा मिरलो मके ये और एक कविता के सुना मनमोहनी बनो लगे लिख ले से मनमोहनी रूपे तू चोखो पने मोगरा फूल मनमोहनी रूपे तू चोखो पने मोगरा फूल तुझो मैंने बया होले से घर के गेले भूल तुझो मैंने बया होले से घर के गेले भूल कारी चुंदरी सोने मुंदरी मोचो सुंदरी तुई कारी चुंदरी सोने मुंदरी मोचो सुंदरी तुई पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी हुन डोरा चो बन लागली करे जहुली चानी हुन डोरा चो बन लागली करे जहुली चानी तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल करी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली माला पिंडली काय सुंदर टिकली कारी कारी माला पिंडली काय सुंदर टिकली कारी कारी नाख ने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल नाखने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्नी चाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्नी चाबी। तुचु रूप के दखुन माए तो दुनिया गेले भूल, तुचु रूप के दखुन माए तो दुनिया गेले भूल। करी चुंदेरी कारी चुंदेरी सोनू मुंदेरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदेरी सोनू मुंदेरी मोचो सुंदरी तुई। मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोगरा फूल, मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोगरा फूल। तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल, तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल। कारी चुंदेरी कारी चुंदेरी सोनू मुंदेरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदेरी सोनू मुंदेरी मोचो सुंदरी तुई। मोचो कविता पाठ के तुमन मन सुनला, मोचो बाटले सबे मन के जय जोहार।
3: एना धर्म दादा
4: वना
3: तो ने कविता पाठ मित्र की तलो ज्ञान दे आंचो कोट रही ना ने
4: कितरो ज्ञान ज्ञान बदलन दक रान बन के बचत काज कितरो हाँ। गोट मन के सांगलो दादा ने
3: दक रान बन निगल पर हमको जीवन पर कसन चले ना
4: ना नी चले
3: दादा इतलो अच्छा सांगलो की रान बन के हमके कसन बचत रहे ने
4: छात्र और दक संग संगे गोट कर कविता बोल बोल लो की मंसूर ने कभी तीनों बल नगर गोट ना होए
3: हां
4: नी लोग मन आप लो जीवन के असनी नसासोत
3: जसा शरीर के जो चीज की जरूरत रही चीज की आम के बोले खातो रहे
4: नहीं
3: आम जो देह पाए बोले अच्छा रहे दे खातो बीती खाद ले देह पाए न से दे
4: हमें एक तरह तक देखू से कि लोग मन बल का आप लोग हर एक काज है कि का चीज का उन निशा पान के शुरू करवात ने शुरू करते करते पांच बार तक होनी बीती फिर आदत हो जाए से हूं चुकी ना रोग बल नहीं होए असन असन हो सो दकुन दकुन बोले बड़ा रिजबल लाग हुआ है और दुख बल लागे से
3: दख तो नानी नानी पीला मन बोले सब सब ये सब चीज में अच्छा चीज नहीं है और अच्छा गोट नहीं है ये सब चीज के करतर बनना है। मैं बोलते रहे धर्म दादा ये बोले इस चीज में अच्छा नहीं है बोलते रहे
4: और तक ये जैसे कि हम गोठियालु की रान बन संग संग हम संग गोटक बोलते रहे जो खेल कूद के आमी हैं हम जो खेल कूद के बोले हम के आप लोग संग आप लोग देख के बोले जुगे अच्छा ले खेल रहे हमके बाहर या खेल बहुत खेल तो रहे तो गबरू भाई दक दाय असनी दक्त दक्त बोल समय बल होली ने तो जसन समय में हूँ से तो हमके चौक बल लागे से और असनी गोट मन धरून एवं बल लागे से
3: तो राम की कहे दक समय में बोले समय जातो बीती बोले आए अब तू मुंडरा गडरक सकल भी मुंडा दादी तुम्हें विदा धरेंगे जातो पूरे बस्तर के शहर कार्यक्रम सुनतर सब पाए गांव करिया दादा दीदी सिंहन सजन मेह माता बाप भाई और संग जोहरे संगवारी मन के मुंह गबरू
4: और मैं धर्मू
3: हम दोनों कर्म से राम राम।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम अमचो गांव।

0: जुहार ना धर्म दादा जुहार
1: हाँ जुहार ना गबरू भाई जुहार
0: उमर लीस नहीं
1: मरलू काय अधक आम्ही तो मरलू अरे संग संग आमचो रेडिओ सुनता दादा दिन मन बोले हमके टाकला सुत मरला होती ने तो मैं बोलता रहे जुहार बैठू होता तो आमचो गाँव कार्यक्रम सुनतो सब पाए दादा दीदी सी आंसर जन माए माता बुड़ बुड़ाए और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं धर्म
0: और मैं गबरू
1: हम दोनों करूँ से
0: जुहार धर्म दादा नानी नानी पीला उनको नी बिल्कुल ना उन बोला हम जो बाढ़ दखते रहे सो बाढ़ रेडियो रेडे रेडे रेडे भी उसमें कर रहे सो अल्लो हम उनको सुरता करो फिर ने अल्लो रेडियो कटा कटा बोल लो सब पे नानी नानी पीला उनको बोल के हम दोनों ने जो बाढ़ लिखो भी को बोल मैं यहाँ और चुन
1: चुना बोले
0: हाँ ये ना धर्म दादा हम तक कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान जो गोड़ धर्म बात यहीं से नहीं और हम जो दादा देवी हम जो बाढ़ दख रहे कहीं ना कहीं हम जो ज्ञान ध्यान जो गोड़ धर्म नहीं बात बोलने बात
1: जी जो गोट बोले आम धर्म मिलो से आमची जो स्वच्छता उन्होंने आमचो दे पाए कि आम्ही कसन साफ सुथरा संगाऊ से आपलो लोग आपलो घर चो आसपास बल बलू से बोले साफ सफाई संगा तो और आमचो जीवना की आम्ही कितरो अच्छा ले सुगम बना सकू अच्छा बना सकू
0: अच्छा
1: जी आम्ही धरून से
0: ये ना दादा धर्म दादा आजी ची आए ना डिमरा पाला सुतो तलोट जाऊ रहे ना बोटो काम ने उठा मैं दख लेना धर्म दादा बोरन बोरन चो उमर लो दख तो बोरन बोरन चो उमर लो और बोरन बोरन चो दिन उनके ना और उनके घर लोग बोले उनके राका आसुत घर लोग बोले परेशान आसुत और जो मरीज आसुत तो परेशान आसे
1: ची
0: उनके कितलो परेशान आसे मरीज के लेकिन ये कसम दख तो उनके नी ध्यान दिलो कारण ने तो सब नुए ना धर्म दादा
1: तो एकदम नगद गोट के मुर कर ले भाई काय है कि दख आजकल चो आम चो जीवना जसन बोलो से आमी आम चो रतो उड़तो और बसतो और जोन बल चीज है उनके संग संगे ये साफ सफा आमचो लगे नहीं रहे सनी उनचो लागुन बल ये अलग अलग नुआ नुआ बीमारी मन झोंटे से तो ये आम के कुछ कुछ चीज तो आम के खुद के बल लेख करूँ लागे से जसन बल लने की आमचो दे पाए के आम के अच्छा नगद संगत रहे चुका संगत रहे और हाथ पाए के बल अच्छा नगद धोत रहे बल्लने आमी जसन की भात खाऊं से ने भात खाद लो पूरे आम के कम साबुन ले अच्छा हाथ के धोत रहे झाड़ा बाहर जसन जाऊं से उतार ले उन बोले आम के नगद हाथ पाए के साबुन ले धोत रहे
0: तो इतले अच्छा गोट के संग ना धर्म दादा दक हम चो घरे बोले ने जो नाम चो पेज आए भात आए नाल साग पांजोन बोला मैं राम दिन रोंग से ये मैंने बोला हमके ढाकून बात मैं सुन जाता है क्योंकि बड़ा संगर में होता कहाँ मोसी आए कि कीड़ा आए कि टंक आए कि था पकाई बल घसर ले होता हम चो बीमारी पर हम चो साग भात में लग मिल जाए ऐसे
1: और दक तू अच्छा गोट के बोल लीस काया की मच्छी मन बस बात नहीं मच्छी तू जानी थी कचरा कोट में कहाँ ये तेता होता बस ऐसे पूरा महिला ने तो होता ले फिर उड़ू ने सो नाम चो भात साग में बस तो उन भात साग के हम खाऊं से उसन चीज मन के हम खाऊं से तो बीमारी तो होए दे छोए दे और दक काय कह के आमचो घर चो पूरे जसन की आजकल बरसा बलम रे से ने तो डोबरा धरली से कोन लग तो नाली बोए से होता मच्छर मन बल जन हुआ मच्छर मन जन
0: अच्छा गट के बोलिस ना दादा दक तो आजकल कुल कुल बल पानी खिंड के डुंगा होली जाली रप के झट के पर हम जो मच्छर मन बिन ले जता जन्म कर सो और हम मन दक तो हम जो शरीर के चाबुन दिल पर हम के बोरंग बोरंग तो नहीं मलेरिया असन डेंगू हो गया है बीमारी मन झमटे से
1: ये असन तुसन बीमारी मन ना है सीधा सीधा अस्पताल ने तो भी बोल दिस उसने बीमारी मन रुका है
0: तो हम चो मतलब नहीं हुए ना धर्म दादा नहीं हम चो दे पाए कि अच्छा संगत और हम ची ऊपर या समय
1: बलाय और संगे संगे दक

0: ये सब बीमारी मन तो हो गया है, मात्र आजकल तक लोग मन के दुनिया भर जो ये चिंता फिकिर बोल लेना टेंशन बोलो आज चीज मन हो ऐसे चुका है कि हम जो ये तो कमा तो रहा ये काम करता रहा हूं काम करते रहा बोलते दुनिया भर जो फिक्र मन कर सो तो हूं चो लागू बोल दुनिया भर बीमारी हो ऐसे बात ये जो कि बीपी बढ़ तो शुगर बढ़ तो ये सब बोल बात सब बीमारी मन पर हो ऐसे तो हूं चुका जी हम जो जीवन शैली बोलो ना हम उन बोल लो ने हम जो जिंदा कसम खाऊं से कसन सो से समय आने सा जो बोला जिसके आपको सुधरा तो रहे
1: मतलब हम जो जीवन का अच्छा हरी कुदुम और सुगुण संग जी तो रहे तो हम जो जीवन बोले अच्छा रहे थे हम जो जिला जिला बोला अच्छा रहे तो हम जो परिवार बोले अच्छा रहे थे आए का अंदाजा तो मैं बोलते रहे धर्म दादा नहीं गोट मन तो आशी चीज हम चो लगे
0: गोट तो सर बोलनी
1: मैं बोलते रहे हम चो लोग जहला बोले
0: तो मोड़ रहा तो बड़े बल दिखा दे ऐसे
1: हेलो बोला ले सी मैं बोलते रहे हला काम बोल सुन और दादा तो दोनों सुन
0: सुन
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपुर्रो

0: दबाव कम आया ना तो उम्मीद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदना और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मरता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: धर्म दादा डॉक्टर जहाला काम बोल सुनलो आमचे दादा तुम सुनला
5: सुनलो का
4: दकाम कहीं ना कहीं ज्ञान ज्ञान के गोड़ दरों में साझी बोलोगे आमचो जो आस ज्ञान ऊपर परिचर्चा आरोता से लोककला
5: हाँ लोककला अरे तदक भाग धरला से श्री किशोर केसकर श्री संतोष चंदेल श्री उदयराम सिंह और एक आमचो पूरे अमरासोत श्री बलबीर सिंह कच्छ
4: अली मैं बोल रहा लेक लोककला के अमी बोल सुनो और आमचो दादा दीदी बोल सुनो
5: अल सुनो
6: गांव का रे भाई भाई मन आज हमदाने तीन जान कलाकार भाई मन इला से सबले पहल किशोर केसकर भाई इमन तबला वादक और संतोष चंदेल भाई ढोलक और तबला दोनों बजाय सोत और
7: उधोराम सेन
6: भाई तो सबले पहल मैं किशोर केसकर भाई आपला पूछता हूँ ये जो कला है बजाने की जो कला में है तो आप लोग कैसे रुचि इस क्षेत्र में कैसे आना हो इस
8: हाँ बलबीर भाई ये संगीत के जो क्षेत्र में जो आयक जो प्रथम जो चरण जो है वो है

0: मोर हे पिताजी जो है वो शासकीय महिला महाविद्यालय रायपुर में वो खुद संगीत के शिक्षक रही से और वो अपन शिक्षा ले पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज जी जो है बनारस में वो से वो शिक्षा लेकर के आए रही से और सर्विस वो रायपुर के महिला महाविद्यालय में वो संगीत शिक्षक के रूप में रहीस। तो हम जब बचपन में जब रहें तो हम अल्लाह 7-8 साल के ही उम्र से घर में ही वो तबला वबला सिखाना और संगीत के प्रति रुझान देना ये पिताजी प्रारंभ करीस और वो समय के परिवेश देख करके वो संगीत विद्यालय में हमर मन के भर्ती कर दीस मोला भर्ती कर दीस। तो वहाँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय जो है आदरणीय स्वर्गीय श्री अरुण कुमार सेन जी की जो संस्था वहाँ प्रथम मोला एडमिशन दीस भर्ती दीस। वहाँ रायगढ़ के जो गुरु जी जो है वो महेंद्र प्रताप सिंह जी ठाकुर वो स्वर्गीय हो चुके है तो पखावजी रहीस वो खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी खैरागढ़ में। तो पहला गुरु मोर वही हरे वो मोला तबला में पहले हाथ रखवाइस ओकर बाद में स्वर्गीय हीरालाल जी त्रिपाठी जी है मैहर वाले वो शिक्षा दीस ओकर बाद में बैकुंठ पटेल जी मैहर वाले वो शिक्षा दीस ओकर बाद में भोलेन्द्र पटेल गुरु जी है वो शिक्षा दीस और फिर आखिरी में मैं लखनऊ के श्री राम ध्रुव जी जो है ओकर से फिर गंडा बंधवाए। तो स्कूली शिक्षा से मतलब ज्ञान प्राप्त होते रही से साथ में एक पूरा परिमार्जन जो है मोर यहाँ पिताजी है गाँव में अपन घर में ये सब चीज ला और परिमार्जन करे और दे और मूल तमल तो यही कहना चाहिए और मैं यही कहा था कि एक घर से ही मुझे प्रेरणा मिले है और उखर बाद में ये सब शिक्षा के क्रम हम आगे बढ़े हुए हैं।
1: अच्छा किशोर केसकर भाई आपके तो जो ये कला क्षेत्र में आए के बहुत बड़ी लंबी सीढ़ी है समझो। अब मैं संतोष चंदेल भाई से पूछता हूँ कि आप कैसे इस क्षेत्र से जुड़े कैसे आए।
2: हाँ मोर यहाँ पिताजी जो रहीस हैं वो बहुत बढ़िया अच्छा तबला बजावे और साथ में ढोलक नंगाड़ा बजाने वाला रहीस हैं और अच्छा नाचा के बहुत बढ़िया एक्टर कलाकार भी रहीन है। अच्छा। तो ओकर संग संग मैं भी देखा रहूँ तो माहौल अच्छा लगे तबला बजाए में ढोलक बजाए में देखे में सुने में बढ़िया लागे तो मैं भी अब धीरे धीरे कर मन के साथ में जाओ और हाथ रखे के वही रखाए के बाबूजी है अपन शुरू करी हमारे यहाँ पिताजी हैं। तो उसने अब धीरे धीरे बड़े गुरुजी जो रही से अपन यहाँ पंडित लोकेश्वर प्रसाद शर्मा गुरुजी वो स्वर्गीय हो चुके हैं तो ओकर साथ में फिर न धीरे धीरे करके हरि कीर्तन है भागवत है रामायण वगैरह है वहां जाना शुरू करें तो वो और अच्छा से बताना शुरू करी साथ में। ओकर बाद इसने करते करते अपन गुरुजी जो है मैं पढ़े बर गया तो पढ़े बर हायर सेकेंडरी में गया तो गुरुजी रही से भखारा स्कूल में मैं पढ़े हूँ अपन धमतरी जिला के भखारा स्कूल में। तो वहाँ मटियारा गुरुजी रही से जो ना बहुत बढ़िया संगीत के जानकार हैं तो वो बोले कि बेटा यहाँ से जब पास हो जाओगे तो सीधा खैरागढ़ चले जाना संगीत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में तो आगे के जो न ये जो शिक्षा है बहुत अच्छा हो जाए तो एक उपलब्धि है हो जाए ऐसे ढंग से। तो मैं कहूँ ठीक है गुरुजी तो मैं हायर सेकेंडरी पास करे के बाद में सीधा खैरागढ़ में भर्ती हो गया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में। मतलब गुरुजी जो है श्री जमुना प्रसाद पटेल गुरुजी जो है वो शिक्षा दीक्षा दिन और ओकरे सानिध्य में बहुत बढ़िया गए थे तबला में एमए तक की डिग्री हासिल करे और ओकर साथ साथ में वहाँ के वो मुकुंद भाले गुरुजी भी रही से ओकरो सहयोग रही से रामनाथ गुरुजी रही से ओकरो सहयोग रही है और साथ में एक जने और रही से मदन मोहन दास गुरुजी जो ना अभी धमतरी में संगीत शिक्षक तबला शिक्षक के रूप में है हायर सेकेंडरी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में संगीत शिक्षक तबला शिक्षक के रूप में है तो ओकरो सहयोग रही से ऐसे ऐसे करके फिर एकर जो ना शिक्षा बढ़त गई से और आज में यहाँ अपन पंचायत विभाग में समाज कल्याण विभाग में बढ़िया संगीत के माध्यम से भी सर्विस में हूँ।
1: अच्छा अच्छा तो अब उधोराम सेन भाई आप ला कैसे इस कला के क्षेत्र में प्रेरणा मिली कैसे आए।
3: हाँ बलवीर के भैया नमस्कार मोला और जम्मू दशर नमस्कार। वैसे ये बेंजो वादन तो बेंजो जो है बहुत विदेशी है मगर ये जब नाच में छत्तीसगढ़ी नाच में और कहीं में रामायण भजन में बजाए तो मैं देखा हूँ। वैसे एकर मोर गुरु नहीं है मैं देख देख के सीखे हूँ मैं हाँ और सीखते सीखत सीखत सीखत बहुत दिनों को बजात बजात मोला और नाच में भजन में ये लो बजात रहे हमें और बजात बजात में अभी तक बजाते हैं और बहुत रुचि लगते हैं मोले बजाए बट सुर बहुत मीठा लगते कर और लोक संगीत में कर प्रयोग भी बहुत होते छत्तीसगढ़ में। तो मोरसाव की इतना रीस की कहीं न कहीं मैं कुछ स्तर तक पहुंचूं मैं ये बजा करके दूरदर्शन तक आकाशवाणी तक पहुँचे मोर विचार रही से। तो आज आप मन के कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गए लोगे और मतलब बहुत अच्छे लगते हैं बाकी मोर तो ज्यादा ये बात नहीं है बस तो बेंजो मोल खूब रुचि है।
1: अच्छा हाँ, बोले शुरू से शौक है
3: शुरू से मतलब खूब शौक है बेंजो में।
1: तो उधुराम सेन भाई चंदिल भाई और किशोर केसकर भाई आगे और बात तो करो लेकिन सबसे पहले तो कोई अच्छा सा धुन हमारे रेडियो सुनने वालों को

0: किशोर केसकर भाई, आप तो ये लोक संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके मन में आपकी जो भावना है, तो लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन में आप क्या सोचते हो, कैसे भावना उठते?
1: बलवीर भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोक संगीत जो है वो जे प्रकार से जो शरीर जो है, शरीर के आत्मा में श्वास जो है वो जान है, और जब तक शरीर में श्वास है तब तक ही जान है, और अगर श्वास नहीं है शरीर में तो ये शरीर है मिट्टी के स्वरूप है। इसी हिसाब से ये जो लोक संगीत जो है वो संगीत के एक जान है, काबर कि लोक संगीत से ही ये शास्त्रीय संगीत और अन्य जो संगीत के ओकर उत्पत्ति यहीं से हो है। जैसे परिमार्जन के रूप में, जैसे तरी तरी नहाना रे, ये सब सुवक गीत वगैरह जो गांव गांव में अक्सर जो गाते थे, और यही तरी नरी नहाना जो है वह तराना के रूप में धर के वह उदय नादिर्दिता नित्य दानी दीम, यह गायन पद्धति में हो जाते। तो ऐसे परिमार्जन करके जो संगीत जो है बोला लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत के स्वरूप में ढाले गए, तो मूल जान तो लोक संगीत ही है, जो ना काफी सरल सुगम और बहुत ही मनोरंजक थे, जो ना लोक के जीवन गाथा से जुड़े हुए थे, वोकर पूरा परंपरा और वोकर पूजा पाठ से लेकर के वोकर हर एक व्यवस्था से वह जुड़े हुए क्रम में थे, वो इतना सरल और सहज होते जो ना घर से लेकर के और गांव में लेकर के परिवार में लेकर के कहीं भी वो सहज रूप से वो प्रकट किया जाते हैं। तो मैं तो यही कहा था और यही महसूस करता हूँ कि लोक संगीत कभी मिट नहीं सके, और लोक संगीत है स्थायित्व ही, और एक ही स्वरूप में शास्त्रीय संगीत के निर्माण जो हो है तो एक शास्त्र के रूप में वोला सब बांध दिए गए है। तो लोक संगीत बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, और लोक संगीत कभी मिट नहीं सके, काबर ये में पूरा जतक भी परंपरा है सब जुड़े हुए हैं, अपन देवी के गायन गाथा सब जुड़े हुए हैं, लोग के धर्म के भी अनुरूप में सब ये जुड़े हुए हैं, और आदमी के जीवनचर्या से भी ये सब जुड़े हुए हैं, उनका दिनचर्या से भी जुड़े हुए हैं। तो लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत के या अन्य संगीत के एक जान है, तो लोक संगीत कभी मिट नहीं सके, और संरक्षण तो हो ही, और चल ही वो कभी मिट नहीं सके तो संरक्षण की कोई बात ही नहीं, तो ऑलरेडी संरक्षण है ही है। तो लोक संगीत महत्वपूर्ण है और ये कभी मिट नहीं सके, और का संरक्षण तो बहुत जरूरी भी है, साथ में महसूस कर बो।
0: तो संतोष चंदेल भाई, आपके मन में आपकी जो भावना में क्या विचार उठते लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन में?
2: लोक संगीत जो है ये माटी के उपज है, अपन जो पैदाइशी जोन हुआ है वहीं से ही ये लोक संगीत के उपज है। लोक संगीत जोन है वो बहुत ही जो जन जन जो है, तो का है कि जैसे श्रमिक गीत है, खेत खलियान में बातचीत करते हैं, ऐसे आम नोक झोंक के बातचीत है, जिला संगीत के माध्यम से गाना बजाना करते हैं, और वही जो है यानी माटी से उपजे हुए ये जो गीत हैं, तो यही परिमार्जन हो करके शास्त्रीय संगीत बन जाते हैं। तो लोक संगीत जो है सबसे मूलभूत महत्वपूर्ण चीज हवे, और ये जो संगीत जो है तो एकर संवर्धन तो बहुत अति आवश्यक है, एकर सती काबर की लोक जो है ना लोक गीत ही में ज्यादा आनंद पाते हैं। जैसे संगीत के दो विधा होते हैं, एक मार्गी संगीत पद्धति होते हैं और एक देशी संगीत पद्धति होते हैं। तो मार्गी संगीत पद्धति जो होते हैं वो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत में आते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में क्या है, जिनमें बड़े बड़े क्या थे छंद, रोला छंद जो है बहुत बड़े भक्ति के जो गीत हैं ओला गाए जाते हैं, और ओकर माध्यम से योग साधना किए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मन, साधु संत, महात्मा मन पहले संगीत के माध्यम से जो साधना करें तो ओला मार्गी संगीत का है, और ओकरे जो रूप हैं जो बड़े बड़े ख्याल है और है, बड़े ख्याल वगैरह है, बड़े बड़े टप्पा ठुमरी, बड़े बड़े जो गीत मन में आते हैं जो कठिन विधा में माने जाते हैं, तो ये आते हैं। लेकिन दूसरा जो संगीत के पद्धति होते वो होते देसी ताल पद्धति संगति। तो ये देसी ताल संगीत पद्धति जो होते देसी संगीत पद्धति में क्या होते हैं, ये अपन मनोरंजन के माध्यम होते हैं, जन मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन जो लोगन के बीच के उपज है, जिनमें हर प्रकार के स्त्री पुरुष लोग लड़का बाल बच्चा सब सहित मतलब खेती बाड़ी काम करते हुए मनोरंजन करते हुए काम धाम करते हुए गुनगुनाते हुए माने हर प्रकार से उत्साहित होकर के गाना बजाना कर सकते हैं, जिमे का कोई प्रकार के बंधन नहीं रहा है, नियम के बंधन नहीं रहा है, ना उनमें मात्रा ठेका के बंधन नहीं रहा है, लय ताल में जैसे कि बाजा बजना है ओकरो कोई बंधन नहीं रहा है। ऐसे स्वतंत्र स्वच्छंद विधाए ये लोक संगीत अपन लोक पद्धति देशी मार्ग ताल पद्धति जो है वो है। तो ये में का है ज्यादा आनंद मिलते हैं। तो लोगों ने जो है बहुत आनंदित हो के वजह से ये जो देसी अपन जो लोक संगीत है वो बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा चीज है। तो एकर जो नए संवर्धन और ये रख रखाव बहुत ही जरूरी है।
0: तो चंदेल जी, जी कह सकते हैं कि जीवन के व्यवहार से लोक संगीत जुड़े हैं।
2: बिल्कुल जुड़े सर।
0: तो उधो राम सेन जी, तो आप क्या सोचते हो संरक्षण संवर्धन?
3: मैं तो ये कथम बलवीर भैया कि लोक संगीत है लय धारणा के मुख्य ये हरे स्रोत है। लय धारणा पर बहुत काम आते है और जब तक एम आनंद है और लोगों मल लोगन मल रुचि है में लोक संगीत में, वो कोई संगीत में रुचि नहीं है। और जब तक रुचि नहीं रही तब तक आदमी कुछ नहीं कर सके, रुचि रही तभी कुछ कर ही। और हर गांव में लोक संगीत के रामायण मंडली है, भजन मंडली है, गांव-गांव में ज्यादा एक प्रचार है, हर जगह लोक संगीत के मने बोलबाला है। और जब तक आदमी रुचि नहीं लिया, और बहुत रुचि ले थे और बढ़ा थे कर कारोबार है कि लोग मन के रुचि बढ़ा थे, अलग छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बच्चे भी आजकल बेंजो वादन में, तबला वादन में, ढोल वादन में, मंजीरा में, बहुत ठन में सब अपन अपन ख्याति प्राप्त कर डरे हैं और करत हवे। तो एकर संवर्धन और बचाव बर काहे कि हमला रुचि ले पढ़ी है, मन लगाल पढ़ी, समर्पण समर्पण की भावना ही तभी हमें बचा सकबो। और तो काहे कि प्राण ये है, लोक संगीत है हृदय प्राण ये है, सांस है। तो एक रख रखाव पर आदमी रुचि चाहिए और हम जैसे रुचि ले थन वैसे बहुत रुचि लेते, बहुत जन वादक मिल गए, बहुत जन सीखे पढ़े लग गए। तो मैं एक हिसाब से कहता हूँ कि आदमी मतलब रुचि होना चाहिए, संगीत के प्रति प्रेम होना चाहिए। बस बलवीर भाई मोरे विचार से यही है।
0: तो सुधोराम सिंह भाई आपके विचार भी तो बहुत अच्छा है, लागे तो और बात करबो, लेकिन पहले एक और कोई अच्छा सा धुन।

0: किशोर केसकर भाई, आज के जो आधुनिक युग में हैं, कई चैनल हैं और बहुत सारे जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं आए हैं, तो इसके आने से क्या ये हमारे जो लोक संगीत है ये बची और बचावो तो कैसे बचावो?
1: बलील भाई, आधुनिक परिवेश में भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो आए हैं, जितने आधुनिक वाद्य यंत्र जो आए हैं, वो आए तो है लेकिन वो उसका हावी हो सके। जैसे हमारे देश में, हमारे भारत देश में पाश्चात्य के भी समावेश हो चुके हैं और पाश्चात्य शैली हमारे जो भारतीय संस्कृति जो है वो शैली से एक एक हावी हो से वो मिट जी है, ये सोच तो मैं उतना ज़्यादा सक्षम नहीं मानूँ। मैं हाँ, काबर कि भारत के जो संस्कृति जो है वो यहाँ वेद पुराण से लेकर के साधु संत से लेकर के संत महात्मा से लेकर के और अच्छा अच्छा महापुरुष बन के लेकर के यहाँ के जन्म जन्मांतर है, पैदाइशी है, वेद वेदांतर है, तो ये जो शिक्षा जो है और ये जो संस्कृति जो है ये है प्रत्येक के भारतीय के माँ बाप में और जितने भी बुजुर्ग है ये सबके दिल में रग रग में सब बसे हुए है। अब बसे हुए है तो हम ऊपर से पाश्चात्य संस्कृति देख करके महसूस ये नहीं कर सकें कि वो हावी हो जाएगी और हमारे भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। वही हिसाब से हम अगर संगीत की दुनिया में अगर हम जान तो लोक संगीत में, लोक शैली में जो हमारे गायन गाथा होते और लोक वाद्य बन के हमारे जो संरक्षण है, डफड़ा, डमोंग, तुतरू, मोहरी, ये जितने भी लोक वाद्य के जो संरक्षण जो है वह ये छोटे मोटे आधुनिक वाद्य आय से ये विलुप्त हो जी ये कहना असंभव है, ये विलुप्त हो नहीं सके। और इन्हें जो आनंद है और जो मजा है, काबर ये जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं कि जैसे शादी है, अब शादी में डफड़ा डब्बू मोहरी के जो भी उनका जो मिठास है वो मिठास वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट हो में अगर कांगो बांगो और ड्रम और ज्यादा सेट वगैरह अगर बजा दिया जाए तो साधु में जो टिकावन जो टिकी जितके भी तेल हल्दी चढ़ाही, जितके भी पर्रा धर के नाच ही, तो ये जो परंपरा जो है वो कांगो बांगो वाला समावेश नहीं कर सके। तो ये हमारे छोटे से छोटे और सरल से सहज रूप में एक बहुत अच्छे एक मनोरंजन के साथ साथ में एक दिल छूने वाला एक एक मिठास उत्पन्न करते अपन लोक संगीत है। साथ में जैसे अब परंपरा में जो चलते जो जमारा है और कुछ है, तो ये जो अपन देवी देवता की पूजा पाठ वगैरह जो जब क्रम जब चलते तो में वही चांग है, वही मादर है और वही ढोल है, ये सब चीज के प्रयोग में ही ये सब चीज है ज्यादा अच्छा लगते है। तो ये कहना तो उतना ज्यादा श्रेयस्कर नहीं है लेकिन ये ऊपर से जो आधुनिक है जो इंस्ट्रूमेंट जो आवत है तो आवत है तो बहुत अच्छा बात है, कोई गलत एक स्थिति नहीं है। काबर कि भाई विकासशील है, दुनिया विकासशील है, हमला आगे बढ़ना है, विकास करना भी है, तो अच्छा अच्छा चीज के भी हम निर्माण क्यों ना करें और बोला साथ साथ में समावेश करके हमला मिला जुला करके चलना भी हमारा चाहिए। एक एक बोला नगण्य करके बोला अलग थलग नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि भाई जैसे हम एक गाँव है और ये गाँव में अगर हम सब वर्ग के लोग रिथन पढ़े लिखे भी लोग रहते, एक मजदूर भी रहते, एक किसान भी रहते, तो पढ़े लिखे तो गर्व ये नहीं कर रहे और ना करना चाहिए बोला कि भाई ये किसान है तो से मैं कैसे बात करूं या एक मजदूर है से मैं कैसे बात करूं। भाई जब गांव में रहते तो भाई नाता साथ मिलजुल करके चलना पड़ते और चलना पड़ते तभी ये सब चीज है बहुत अच्छा लगते है। यही हिसाब से जितने भी आधुनिक वाद्य है और लोक वाद्य है तो दोनों मिला जुला करके हमें चलना भी चाहिए और चले के हमें प्रयत्न प्रयास करना भी चाहिए। एक से कहा है कि मानसिक विकास के साथ साथ में अपने विकास की ओर में जो बढ़ा था ये भी एक रुचिकर हमें पैदा होते और अच्छा भी लगते। तो कहे का ऐसा ये है मोर कि लोक वाद्य में हमारा डफड़ा डब्बू कभी विलुप्त नहीं हो सके और लोक संस्कृति लोक परंपरा में जितने भी हमारे दिनचर्या जो चलते आए जिंदगी के क्रम में अगर बच्चा पैदा भी होता तो छठी छोरी में गाना बजाना से लेकर के ऊपर अर्थी भी निकलते तो उसमें गाना बजाना सहित वाला जा करके वाला अंतिम शव यात्रा में वाला देना पड़ता। तो संगीत तो जीवन में जुड़े हुए ही क्रम है लेकिन लोक संगीत और लोक परंपरा लाए कभी विलुप्त नहीं हो सके और जब तक लोक परंपरा अगर विलुप्त नहीं हो सके तब तक लोक वाद्य विलुप्तकरण नहीं हो सके। और इनमें ऊपर से जो पाश्चात्य के जैसे हावी हमारे भारत संस्कृति में नहीं हो सके उही प्रकार से भारत ऊपर से जो भी इंस्ट्रूमेंट जो आवत है आधुनिक इंस्ट्रूमेंट आवत है वह लोग वाद्य वह हावी करके वह मिटा दी ऐसे कोई बात नहीं है उनमें लेकिन साथ में लेकर के चलना ये समय के परिवेश के अनुरूप में चलना है ये हमें उनके समझदारी है और चलना भी चाहिए और मिला जुला करके सब कामला करना चाहिए और कैसे एक आनंद की अनुभूति भी होते
0: है। तो किशोर केसकर भाई आपकी जो मन की जो भावना है विचार है बहुत अच्छा है और हमारे साथ संतोष चंदेल भाई थे तो जवान है भाई है कि नहीं और इसको बचाए पर तो आप ज्यादा जिम्मेदारी
2: जी जी जी
0: तो आप क्या सोचे ऐसे
2: हाँ लोक संगीत जो है वो अब बच ही और ये जो हवे ना जब तक के हमारे देश में परंपरा रही जब तक के हमारे देश में जैसे परंपरा है एक मतलब ये तीज त्योहार की परंपरा है जैसे मान लो जाए जब तक के समाज रही तब तक के परंपरा रही और लो परंपरा से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उनमें पारंपरिक जो वाद्य जो बजते ना वो तो रहना ही है। रह गए सवाल आधुनिक जैसे वाद्य हैं तो आधुनिक वाद्य में अब आधुनिक वाद्य में जैसे कि अभी अभी नवा नवा आ चुके हैं जैसे कि ऑक्टोपेड है सिंथोसाइजर है वायलिन वगैरह बीच बीच में जैसे कि आ जाते लोक संगीत मन में तो वो खूबसूरती बढ़ाए बार थोड़ा बहुत समावेश अच्छा भी है और लोक

0: वाद्य जो है तो वो तो बचना जरूरी है, एक सती बचना जरूरी है कि जैसे कि हमारे गांव में अब सब के सब पढ़े लिखे नहीं है कि वहां पर पढ़े लिखे का मतलब यह कि संगीत की विधा पूरा पूरा मतलब वो मना नियम के बंधन में नहीं रहा है कि एक मतलब मोर ये है कि शास्त्रीय संगीत जैसे नियम के बंधन में है तो वैसे ढंग से उनमें नियम के बंधन नहीं है। और गाय बजाए वाला जो चीज है जैसे मान लो जाए पंथी गाना बजाना है तो उनमें मांदर जो है एक सुगम आसानी से बनाए जा सकते हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं, वो भराव भी इसने लगते हैं। तो वो जो लोकगीत पंथी में जो मादर बजते हैं तो वो जो हवे ऑक्टोपेड में बजाए कोशिश जरूर करते हैं, वाद्य में स्वर निकाले जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन ओरिजिनल जैसे मृदंग है मादर में जो आवाज आते हैं और वो में जो पंथी जो वादक है या नर्तक मन जो गाना बजाना करते हैं वो चीज जो है ऑक्टोपेड में नहीं आवाए। तो एकर के एक मतलब ये है कि अपन जो लोक वाद्य है ना वो तो अगुआ रही और बाकी जो हमें आधुनिक वाद्य जो है कृष्णो भी करी पिछुआ रहे पीछे में रहे हैं। तो हमार जो लोक वाद्य जो है इसने हर हर मतलब सीजन में जैसे जमारा है जमारा में जितना ढोल अच्छा लगे वो अपन ओरिजिनल ढोल जो लकड़ी में बनाए हुए है वो ये मिट्टी के बनाए हुए में जो आवाज आते हैं भराव आते हैं गाय बजाए में गविया बजियाल आनंद आते वो आनंद जो है ऑक्टोपेड जैसे कि वो में निकलते आवाज है तो उनमें उतक आनंद नहीं आवे नहीं। तो कुल मिला के है कि हमार जितना भी लोक वाद्य मन हवे वो अगवा ही रही। एक सती में तो यही कहूँ कि हमार जो लोक वाद्य है कभी विलुप्त नहीं हो सके।
1: जो आधुनिक वाद्य और लोक वाद्य में मतलब ये अंतर आप समझते हो कि ये जो
0: जी
1: आधुनिक वाद्य मन को नहीं छूते
0: हैं। हाँ नहीं छूते हैं लोक, लेकिन अपन लोक वाद्य जो है मन ल छूते बस आधुनिक वाद्य ल थोड़ा से एक कनिक मन ल औ बहकाए बर मतलब बहलाए बर अच्छा थोड़ा से सुंदरता लगे बर ओला साथ में भले समेटे जा सकते लेकिन जो पारंपरिक जो वाद्य है वही सर्वश्रेष्ठ है।
1: तो अब सेन भाई आप ला पूछते हैं कि आप तो उदयमान कलाकार हैं समझो तो आप मतलब रुचि आपको मतलब कैसे लोक संगीत में है कि दूसर जो आधुनिक संगीत में है।
2: हाँ बोलिए भाई मतलब लोक संगीत में शास्त्रीय संगीत में दोनों रुचि है। वैसे मैं हाँ तबला में कोविड के हूँ खैरागढ़ से
1: अच्छा
2: द्वितीय श्रेणी में मोल मेडल भी मिले हैं। और संगीत तो लोक संगीत ऐसा है कि घर घर में बजाया जाने वाले जो संगीत है ये संगीत है और क्या है एक प्राण है आत्मा की भूख है संगीत। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल मतलब संगीत आत्मा की भूख है। तो ये तो संगीत ऐसा है कि हृदय में बसने वाला मन में बसने वाला संगीत लोक संगीत है और बहुत कठिन नहीं है ये लोक संगीत है। आदमी रुचि होए के और रुचि होना चाहिए में और घरों घर तो कलाकार में हर

0: ये सब पाए जाते मैंने डेप वगैरह जो पाए जाते संगीत के लिए, और आदमी जब वो संगीत में जब रुचि है प्रेम है तभी वो सब चीज रखते हैं और ओकर बिना तो काकरो काम नहीं चले, चाहे संगीत के बारे में जाने या नहीं जाने मगर वो संगीत के समान इंस्ट्रूमेंट रखते वो घर में है सुनते, बिना संगीत के आदमी वो आदमी अधूरा है, जीवन अधूरा है संगीत के बिना। तो बलवीर भाई मैं ज्यादा नहीं कहा मैं, हाँ संगीत लोक संगीत प्राण है तो बस मैं इतना कहना चाहूँ।
1: तो उदय भाई, चंदन भाई, किशोर केसकर भाई, आप मन के जो विचार बदले, आप मन के जो भावनाएं हैं वो रेडियो से हमारे श्रोता मन सुनिस और कुछ न कुछ तो प्रेरणा मिलेस हुई। तो हमार बातचीत ला विराम तो करवो, लेकिन पहले एक और धुन हुई सुना।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चौगांव आकाशवाणी का। ये जगदलपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम कुड़े फूल में आज सुनिए सुकुल धर और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का।
2: फूल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुकुलधर और साथियों के स्वर में हलवे लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे सुकून भरोस साथियों के स्वर में हलवे लोकगीत। कार्यक्रम था कूड़े फूल। मैं आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन का जगूट। प्रस्तुति है रुद्र प्रताप सिंह की।

काजे गोट सुनतो नानी बड़े सपाय पिलामन की मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और लाड़। हाँ तो पिलामन आमी ये कार्यक्रम भित्रे रोजे दिना तुमचो पूरे धर्मभाती अमरू से आमचो देशचो माटी ने जन्म धरलो वीर पुरुष वीर योद्धा और महान समाज सुधारक मंचो गोट की जोन की आम के आमचो समाज के आमचो देश के आप लोग कर्म ले और आप लोग ज्ञान ले नगद बाट के दखाला और आम के आमचो देश चो प्रति देशभक्ति के जगाला। आमी सबाय लोग के गोटोक सुतूर ने चलतो काजे सीख दिला बाढ़ दखाला। असन तो आमचो देश ने कैक जन महान हस्ती मन जन्म धरला मानकर आजी आमी जानवा आमी गोठियावा आमचो देश चो असनी वीर पुरुष और वीर योद्धा जोन आप लो देश और आप लो मातृभूमि चो रक्षा काजे आप लो जीवना के खपाला मानतर फेर बले देश चो दुश्मन मंचो पूरे हार नहीं मान ला और आप लो वीरता और शौर्य चो लागुन आप लो नाव के अमर करला असनी ये वीर और महान योद्धा आत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चो जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान जो कुंभलगढ़ नाव चो जगह ने राज परिवार ने होली। ये मंचो बाप रला महाराजा उदय सिंह और माय रानी जीवंत कंवर रला। महाराणा प्रताप पीलाबेरा लेची खूब साहसी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय रला। ये मंचो पीलाबेरा चुनाव की कारली महाराणा प्रताप के पीलाबेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलाते चो शिक्षा मिरली और महाराणा प्रताप बले पीलाबेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलातो ने महारत हासिल करला। एक के दखुन ये मंचो बाप महाराजा उदय सिंह खूब हरीक होते रला। धीरे धीरे समय होते गेली और महाराणा जवान होला। सन 1572 ने महाराणा प्रताप चो राज्याभिषेक होली और ये समय ने ये मंचो राज ने खूबे संकट और विपत्ति मन के बले सामना करो पड़ली। मानतर महाराणा प्रताप आप लो सूझबूझ धैर्य साहस और पराक्रम ले सपाय विपत्ति चो सामना करला। महाराणा प्रताप आप लो बाप राजा उदय सिंह चो आखरी इच्छा चो मान करुन भाती आप लो सौतेला भाई जगमाल के राजा बनातो चो विचार करला। मानतर हुन समय मेवाड़ राज चो विश्वास पात्र चुड़ावत राजपूत मन जगमाल चो राजा बनतोर मेवाड़ राज का जे खुबे नुकसान होय दे बोलुन भाती जगमाल के राजा बनतोले मना करला। मानतर जगमाल सिंहासन छाड़ूक नी चाहते रहे यही काजे पाछे रीस होन भाती बदला धरतो काजे अजमेर जाऊन राजा अकबर चो सेना ने मिसलो। यही समय ने राजकुमार प्रताप के मेवाड़ चो राजा बनाला और संगे संगे महाराणा चो खिताब बले मिरली। ये समय ने दिल्ली ने राजा अकबर चो राज चलते रहे और अकबर चो मुगल सेना मेवाड़ राज के आपलो राज ने मिसातो काजे चित्तौड़ चो चारों बाटले घेरला। मानतर महाराणा प्रताप चो वीरता और साहस ले युद्ध के लड़ला और कठिन परिस्थिति ने बले हार नहीं मानला और आपलो मातृभूमि के गुलाम हो नहीं दिला। मुगल सम्राट अकबर ये मंचो राज के जीतून भाती आपलो राज ने मिसाऊ चाहते रहो मानतर राणा प्रताप एमन के असन नी होग दिला और जीवना भर एमन संगे संघर्ष करते रला। महाराणा प्रताप 7.5 फुट डेंग और एमन चो वजन 110

0: किलो रली ए मंचो सुरक्षा कवच 72 किलो चो और भाला चो वजन 80 किलो रहे। महाराणा प्रताप जेबे युद्ध करुक लाए जाते रहोत हुन समय ने ए मंचो तलवार ढाल कवच और भाला ए सपाए के मिसौन भाती 208 किलो लेबले आगर वजन के उठौन भाती युद्ध करते रला। आजी बले महाराणा प्रताप चो कवच भाला तलवार ये सफाई अस्त्र शस्त्र मन उदयपुर राजघराना चो संग्रहालय ने सुरक्षित आसे। महाराणा प्रताप लगे गोटोक घोड़ा रलो हुंचो नाव चेतक रली। ये घोड़ा बले खूबे समझदार और वीर रलो और महाराणा प्रताप के बले चेतक घोड़ा के खूबे लाड़मया करते रला। गोटोक समय ने युद्ध बेरा ये घोड़ा 26 फीट चो घाटी के डगौन भाती महाराणा प्रताप चो जीवना के बले बचालो। असन तो महाराणा प्रताप आपलो जीवना ने कैक ठन युद्ध के लड़ला। मांतर एमनचो जीवनाचो प्रमुख लड़ाई आए 18 जून 1576 के लड़लो हल्दी घाटी चो युद्ध। ये युद्ध ने मुगल सेना लगे 80,000 ले आगर सैनिक रला और महाराणा प्रताप लगे 20,000 ची सैनिक रला। फिर बले एमन हार नहीं मानला और आपलो पराक्रम की दखाला और मुगल सेना के पाट गुचा जातो का जे मजबूर करला। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध चो पाचे चो समय पहाड़ और जंगल ने बिताला। आप लोग पहाड़ी युद्ध शैली चो कारण ने ये मन कई खार मुगल सेना के मात दिला। ये समय महाराणा प्रताप के खूबे तकलीफ जो सामना करु पड़ ली। मांतर फिर बले ये आप लोग आदर्श के निछाड़ला। ये महाराणा प्रताप जो पराक्रम धैर्य और मजबूत इरादा रहे कि यही कारण ने 30 बरस लगातार प्रयास जो पाछे बले अकबर महाराणा प्रताप के बंदी बनाओ नहीं सकलो। महाराणा प्रताप जो प्रिय घोड़ा चेतक रलो जोन आप लोग आखिरी सांस तक आप लोग स्वामी चो साथ दिलो। आखिरकार जंगल ने शिकार खेलते समय के पावलो घाव चो कारण ने 19 जनवरी 1597 के चावंड नाव चो जगह ने ये मन आखिरी सांस धरला। ये खबर के सुनुन भाती अकबर बले खूबे दुखी होलो। हाँ तो पीला मन ये रहे सूरवीर महाराणा प्रताप चो जीवना चो गोट। आले ए दाए सुनू ये गोटो गीत के
1: जागाओ।

तो पिला मन ए गीत तो होली और राजा तो सामयावल होली। तो जातो पूरे पिला मन का जे गोट सुन तो सपाय नानी बड़े पिला मन के मचो बाटले फेर हारक खूबे खूबे लाड़ और मया।

0: के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या।

0: में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
2: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian.

अब सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक का गाया गीत फिल्म कामचोर से। बोल इंदिवर के हैं, धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है दो चोर। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का पुराने फिल्मों से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, रात के 9:30 हुए हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम उवाट। उवाट कार्यक्रम में आज सुनिए श्री विधि और मत्स्य बीज उत्पादन की जानकारी। प्रस्तुत करता है सीआर कश्यप और लुभान परिग्रही।
1: रेडियो सुनतो सपाए दादा दीदी मन, आज मैं सरकार बाटचो बनालो उवाट श्री विधि उवाट के साने दे। ये उवाट चो उद्देश्य है कि धान चो कमाने करलो में रोपा लगा तो काजे और रोपा लगा तो हो तो खर्चा मन के बचा तो काजे होए से इचो उवाट ले ये काम मन होए से। खेतियार मन चो धान के नगद कमातो रुवाट श्री वल्लो ने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये उवाट ले कमातो काजे उन मन के सांतोर और प्रोत्साहन करतोर होए से। धान के नगद उपजन करतोर खेतियार मन बढ़ती और कमातो ने बढ़ती करतोर खेती किसानी चो बढ़ती आगर करतोर ये सब उद्देश्य होए से। श्री वाटले खेती कमाने करलो में रोपाले होतोर खर्चा के पूरा करतोर होए से। नंगत श्री विधि वाट आपन मन काजे प्रोत्साहन और छूट देतो बीती वोटो वाट होए से। असन खेतियार जो श्री वाटले धान चो कमाने कर सो वाट बाड़ूक सके ये वाट में किसान पात्रता हो से धान योजना तो लाभ मिले दे। एकला खेतियार के अधिक ग्राम पंचायत ले भराऊं उनके दे दे एचो पाछे समय आए मई महीना चो सरासरी। श्री विधि के भरतो बिता खेतियार के प्रोत्साहन राशि एचो बाटले खेतियार धान कमाने कर लो ने प्रोत्साहन पैसा चो लाभ मिले दे। प्रोत्साहन ₹1,700 एक बोरी यूरिया ₹280 जिंक सल्फेट ₹25 ₹850 वीटीसाइड ₹570 पीएसबी ₹100 सफाई के मिलान ₹3,500 इमन के लागे दे। ये सांडवा हिसाब में ये योजना बांट ले बेड़ा के तिहार और उनता ने कीटनाशक दवाई मिंजानी काटतो मुंडा तो ये सब खर्चा के लागुन ₹10,000 एक हेक्टेयर हिसाब में मिलवाए। उनचे कमातो बीती सहकारी समिति बाटले उन विकास खंड चो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बाटले एक देवार प्रोत्साहन देतो बीती पैसा एक हेक्टेयर ने 3,500 देतर होए से। कोनी एक लो हेक्टेयर के 5 बरख में एक प्रोत्साहन राशि देतर होए से। किसान मन के ये प्रोत्साहन राशि किसान मन चो आपलो बैंक खाता नंबर में पठासोत। ये योजना के चलातो

प्रतिशत अन्य प्रतिशत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 50%, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 100%। कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो काम आए कि किसान मंचो दिलो आवेदन के समय ने तैयार करते रहे योजना ने भाग भर लो किसान मन के श्री विधि चो प्रशिक्षण देतोर श्री विधि का जे पूरे धान चो रोपने वाली पलहा तैयार करतो श्री विधि चो लाभ भरतो किसान किसान के देतोर श्री विधि चो किसान के प्रशिक्षण देतोर ग्रामीण विस्तार अधिकारी ले भरतो किसान मंचो आवेदन के संगम आयोजन करतोर ये आयोजन काचे जिम्मेदार अधिकारी जिला स्तर में अनुविभागीय स्तर और सांख्यिकी अधिकारी छोड़े से सांख्यिकी अधिकारी फसल काटलो कार्यक्रम जो तैयार कर तो निरीक्षण बल करे दे जांच पछाड़ा बल करे दे और इस पाछे फसल कटाई चुका छे ग्रामीण विस्तार अधिकारी कृषि विकास अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मन ये काम में भाग धर दे ये योजना भीतरे किसान मन के मृत्यु राशि किसान के अनुदान हिसाब में 1 हेक्टेयर हिसाब में 3,500 प्रति हेक्टेयर चौदह में 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले दे।

0: मछली बीज उत्पादन योजना अनि यही वाक्य पनि सुन्नु।
1: रेडियो सुन्तो दादा दिदी मन असन्तो सरकार बाटले कहीं गरम गरम चो योजना मन निकरेसे आमचो भाई बहन मन का जे ये योजना मन जानत और ये योजना मन चो फायदा धरत गरम भाती ये योजना मन गरम गरम चो निकरेसे। तो आज ही बोले ये गोटक असनी गोटक योजना आसे जे चो नाम आए मत्स्य बीज उत्पादन। ये चो योजना चो उद्देश्य हुई से आधुनिक वैज्ञानिक उवाट ने मछली बीज उत्पादन करुण घाती सरकार बाटले नाले प्राइवेट बाटले हिसाब ने मछली बीज चो जो मांग आसे उनके पूरा करतोर। ये चो लाभ हुई से सामान्य आरो आदिवासी क्षेत्र मन ने विभाग मछली बीज उत्पादन हेचरी मछली बीज ले आधुनिक वैज्ञानिक उवाट ने विभाग बाटले मछली बीज उत्पादन करुण मछली बीज जो उपयोग सरकारी तरी डोगरी मन ने डालतोर नदी नाला मन ने डालतोर और जो मांगे बढ़ातोर आरो प्राइवेट मछली पोसते लोग मन के बोले अलग अलग जितलो आसो सफाई काजे बिकते हिसाब में ये वट आसे तोरी

सारे नदी मन में मछली पालन जो विकास इचो उद्देश्य हुए से तोरी मन में मछली पोसून मछली जो उत्पादन क्षमता के आगर ले आगर बढ़ा तोर और इचो लाभ हुए से सामान्य आरु आदिवासी क्षेत्र मन में सरकारी तरी मन में बनाम आरु मछली पालन जो भारतीय मत्स्य उद्योग विभाग बाटले करतोर राज्य जो सपाय बहत नदी में मत्स्य की केयर फिशरी अंतर्गत अल्प होलो मछली बीच मन के आगर ले आगर बढ़ावा देतोर देवन नदी मन के अच्छा ले बीच के फेर ले स्थापित करतोर उद्देश्य ले आदिवासी बहुल क्षेत्र चो इंद्रावती आरो सुबरी नदी में रोजे बरक मछली बीच छाड़तोर प्रावधान रवाए शिक्षण प्रशिक्षण मछुआरा जैसन की दादा दीदी मन के रिलीव हुए से हुन हिसाब में इनचो पालन कसन करतोराए एचो वार्ड भीतरे 10 दिन चो टेरलिंग एचो उद्देश्य होय से सपय मछुआरा आरु मछली जाल घूमते हिसाब आरु डोंगा चलते हिसाब के टेरलिंग भीतरे सांग दे एचो लाभ होय से 10 दिन चो प्रैक्टिकल आरु थ्योरी बल्लो में चला तो पूरा प्रैक्टिकल होय से थ्योरी बन होय से 10 दिन चो प्रैक्टिकल आरु थ्योरी हो

उन्होंने परिवार बिता मन के सहायता राशि हिसाब ने पैसा मिरुक लाई सके एचो लाभ हो से एक केंद्र आरु राज्य दोनों बाटले मिरन भत्ती आधा आधा हिसाब ने अंशदान योजना मिरुआ मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि बल्लो ने 65 रुपया प्रति हितग्राही के ए लागे से राज्यांश राशि 32 रुपया 50 पैसा प्रति हितग्राही हिसाब ने बैंक ड्राफ्ट हिसाब ने फिश कोड नई दिल्ली पठातुर हो से मुछुआ आवास योजना ईवल गोटो योजना भीतरी गोटो योजना आए एचो उद्देश्य हो से नदी हो तालाब हो समुद्र हो नाल कई असने ये मत्स्य खेत करतोर मछुआरा मन के लगे इमन के घर देतोर हो से एचो लाभ नदी तालाब मन ने मत्स्य खेत करतो मछुआरा मन के

0: पंचे जोन बोले मूलभूत सुविधा होय से जसन की घर हो नाले जसन की पानी हो एमन जो जोर जोन लागे से मन के जिनिस मन हो इसपा एमन के मृत्यु काजे जसन की जहां एमन मचिर धसो तुन आसपास एमन के डेरा देतोर होय से।
1: हाँ तो रेडियो सुन तो दादा दीदी मन ये योजना मन तो सुन लू और योजना मन के सुन नाम के ये योजना मन के लाभ बल धरतो रहे और लाभ धरोन आगर आमदनी आम के धरतो रहे और देखा आमदनी आगर होलो ने हरिक बोल लागू है और हरिक होलो ने अस्मिची गोटक गीत आसे अली एक गीत के बोले सुनू।

0: तो रेडियो सुनतो भाई बहन मन गीत तो सरली मांतर दखा असनी आम्ही सरकार बाटली बनलो वाट मन के धरून तुमचे लगे अमराते रहू दे सुनाते रहू दे तो आज काचे इतली ही आले सपाय लोक के मोच बाटले जुहार
1: वाट कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे श्री विधि और मत्स्य बीज उत्पादन की जानकारी। प्रस्तुति थी सी आर कश्यप और लुभान पानीग्राही की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हल्बी लोकगीत। कलाकार है मधुराम और साथी।

0: था
1: ये दोनों भाई जुटे समय सुनो भाई जुटे समय
0: सबै चढ़े मन खुबे हाँसला सबै चढ़े मन खुबे हाँसला
1: सबै चढ़े मन खुबे
0: दोनों भाई बल्ला होगा रहा तुम्हें दोनों भाई बल्ला होगा रहा तुम्हें
1: दोनों भाई

0: प्रकार थे मधुर और साथी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हल्बी बोली में परिचर्चा ग्रामीण परंपरा और योग। प्रतिभागी हैं श्री बलदेव मौर्य और श्री मंधर रामनाग। संचालक हैं बलवीर सिंह कच्छ।
1: गांव करे भाई भी मन जिसन की आपन मन आजकल रोज दिन आपन मन सुन सास जान सास होते कि देही पाए के नंगत रतो काजे स्वस्थ रतो काजे बीमार सीमार निभर तो काजे बलने योग के बोले ने गांव गांव ने गुलाय बाटे प्रचार प्रसार बोले हुए से सिखाए सो सांग सो मंत्र होनी जो योग चो प्रक्रिया है आम चो जो ग्रामीण परंपरा ने बोले आगे ले चलते ऐसे मंत्र नी समझ तो कारण ने आम उनके जानु कुलाय नी सकूं एके आम के वे समझ तो खूब जरूरी है कि आम चो परंपरा मन ने काय काय असन काम बुता ने योग संगे मेल खाए से ये गोड बात करतो काजे आज आमता ने इलासे श्री लोकनाथ नाग श्री मंधर राम नाग और श्री बलदेव मौर्य। तो मैं सबले पहले पूछूं है भी कि बलदेव मौर्य बाटले कि असन काय परंपरा से आम चुजन काम धाम ने आए और योग संगे मेल खाए से
2: हम चो पुरखा पार्टी दिन ले जसनी हमन मन माय बाप मन आसुत और हमी मन गोठिया सिकलू हिंदू बोलू सिकलू दल दायली ये मन आमचे माय बाप सांगुक मुरिया हुआ और ये सांग तो बीती हमचो सीधा घर संगे जुड़ली से माय बाप संगे जुड़ली से और हुन हमचो दिनचर्या च बले हम काम धंधा सिकतो काज बले हुन जुड़ली से और हुन हिसाब ने बोलो में जसन की घर चो माय मन आसोत हुन मन राती मने बड़े सवेरे सवेरे चार बजे बोठू हम चार बजे बोलो से उदल नहीं तुम चार तुम घड़ी तो नहीं कहीं नहीं हम जो घड़ी बोलो ने कुकड़ा है कुकड़ा बासलो ने उठुन बाती हम चो माए माता भाई बहन मन धान कांडुक ने होत हम चो माए बाप मन बाप माए बाप मन नांगर धरुन बाती बेड़ा बाटे जाओत तो ये बेड़ा बाटे नांगर धरुन जाओत हुन बले एक प्रकार चो योगा है हुन रोजे हुन टाइम है हुनिच टाइम आए और टाइम बदल तो बीती ना आए। अब जैसा माए मन बले उठला सीधा धान कांडुक जा दे ढेकी ने मार दे हुन में प्रकार बले हुन एक संग संगे मिर्लोची असन दिखा दे ऐसे ये असन करुन बाती हम चो महिला मन के बीमार नहीं होतो चो बले ये चो ये काम के नित्य कर्म बोलू हम चो पढ़े लिखे हिसाब ने नित्य कर्म हुन सब बिहान ले शुक्रवार ले धरुन बाती हुन आप लोग काम धंधा के दोना पान पहले सिल तो बीती बले हुन योगा ची असन आए अंटकी मन खेले से आए पेज राम तो बोले उसनी आए हाथ वहां खेले से योगा ची आसन आए है नहीं धान कांड लो ने नाच लो आसन हो खोए से पूरा शरीर हुन पूरा शरीर ऊर्जा होए से है नहीं उनके चाव धान चावर के उनके फूने से हुन बोले हुन योगा ची आसन होए से ये जीतलो बोले हम चो मतलब ये दिनचर्या नित्य कर्म होने से ही सब योगा से ही संबंध आसन लागे से तेबे हम चो लोग मन हुदल दाए नहीं बीमार सीमार बोले नहीं पड़ते रहो।
1: तो बलदेव मारे दादा ये तो हमें अच्छा गोड के सांगला सुनसुरता करा लास और बलासन कई परंपरा आसे जो योग संग मेल खाए से तो मैं यही योग आराम चो काम की सुरता कर तो काजे मंधर राम नाग बोले
3: तो आगे चो जीतर वाले जो बूटा बहना है तो आम चो शरीर जो है बूटा बहना में आम चो शरीर चलते रहे और आम चो शरीर मजबूत होते रहे उसने बूटा बहना ने आमी सनकारी उटू नागर वेला फांदुन माती नेतराय और कुकड़ा बास दी जा नेउन माती बेर मुंडे तक आमी नागर बिसा तरनो आए आम चो हाथ पाए चो आम चो दे पाए पूरा शरीर चो आम चो जितले बले बोपूची जाए बलची जाए उन तान लगाऊं तो आम जो शरीर जो है हिंडती चाहे आम जो शरीर के आमी हाँ विशाख नहीं देते रू ये बोल आम जो योग ने हम ये की कर लू से मानतर का है कि आजकल जो है हम नागर धरत बाटे हम एक कम कर लू और आमी ये चो जगह में आमी खेती की तरह नागर आम का ट्रैक्टर उपयोग कर लू तो ये चो नाम जो है ना पारंपरिक जो योग है आम जो बुता बहना चो ये भी ते आम चो ये भी नहीं आए तो एक आठ आसन करते रहूं तो हम तो शरीर मजबूत होता रहे। हम बीमार सीमार जर मुंड बोले कम पड़ू, खांसी खोखली बोले कम है, तो ये आगे जो योग आए और ये योग के ये भी हम भुलत जाऊं से तो ये योग के कर तो हम नहीं जानते रहूं कि योग आय का आया, लेकिन हम शरीर जो योग में ये हम जो ठीक होते रहे और ये भी जो है नाम जो योग जो नाम दिलू और योग जो हमी भीतर जो ये काम आगे बोले करते रहूं।
1: ये तो अच्छा गोटाए मंत्र देखा असन और बोले कितली हम जो काम आसे हम जो परंपरा ने कितली बोले बूटा बहना आसे तुम्हें दें लोकनाथ नाग के तुम पूछू है भी कि तुम बोले सुरता करा हम जो कौन कौन असन काम धाम है जो योग संगे मेल खाए से
4: आजकल और आगे चो मैं बहुत अंतर होली से आगे चो लोग खूब मेहनत करते रहो। महिला मन पुरुष मन चार बजे उठो और महिला मन आप लोग झाड़ू लगा तो काम धान काट तो काम और मंडिया रुच तो काम ये सारा काम बहुत करते रहो और उनमन जो हाथ पाँव मजबूत होते रहे ये बोले योग संग जुड़ते रहे। उंगली बले पाँव बले हाथ बले मुंडे में पानी बोतर बले ये बोले योग संग जुड़ते रहे। उसने आम जो पुरुष मन बले उसने चार बजे उठून बाती नांगर निवात आप लोग समय अनुसार धान बुआत खापुआत और मेड़ बनवात और तालाब बले बनवात और बड़े कुआं बले खोदुआत ये उनमन चो योग चो सुतूर आए और आगे चो लोग पैदल जाते रहो जहाँ बिया करे वाले पैदल जाते रहो। हम जो परंपरा अनुसार गांव में बाजार जतरा मंडई बले होते रहे उता बले पैदल जाऊआ उनमन चो हाथ पांव पैदल जाते रहो गुण मजबूत होते रहे और चप्पल नहीं पहनते रहो तेबे चप्पल पहनसो आगे चो लोग इतनो मेहनत करते रहो उनमन चो हाथ पांव मुठ्ठा कट्टा रहे और दांत नहीं टूटते रहे बाल नहीं पाकते रहे असन टाइप जो मेहनत रहे ये बोले एक असंग जुड़ली से आगे जो लोग मेहनत करुन करुन खूब दिन जीते रहो सौ लेवल जीतात रहो लेकिन एक जो लोग उतलो जीव नहीं सको मुश्किल में 60-70 साल जीव सो आगे चलो कभी बीमारी नहीं होते रहे। गांव में आगे जो पीला झीला बोले गांव में कबड्डी बोल खेलते रहो डुडू बोले खेलते रहो बारह डांडी बोल के तो ये बोले योगासन के जुड़ ली से क्योंकि आगे जो लोग नाहक बोले जाओ तो उताबल हारा जीता खेलते रहो उन बोले योगासन के जुड़ ली से हाथ पांव चलते रहे उंगली चलते रहे हम जो शरीर बोले अच्छा ये बाटो बाटे झूलते रहे उन बोले योगासन के पसीने निकुरन जाते रहे ये सब योगा संग जुड़ लो बीती है।
1: हाँ, बिल्कुल सत्य मुल्ला लोकनाथ नाग तुम्हें बोले नसन कई असन परंपरा ने आम चो काम धंधा आसे जो योग संगे जुड़े से टेबलेबल का है कि आम के ये भी जरूरत आसे कि गांव चो जो लोग मनात जो नाम चो काम धंधा के छांडला से उनमन के सुरता करा तोर और जो पुरका पाटी बेरल जो चलती ऐसे काम धंधा के उन हिसाब ने काम कर उन बाती बोले आम के स्वस्थ रहते तो बलदेव मोरे मैं फिर तुमके पूछू है सुरता कर तो काजे कि और असन काय काय काम आसे आम चो परंपरा ने
2: हम चो परंपरा में ये भी हामी मन नहीं सेवा जुहार बोलू से ये चुता ने खूब मतलब आसे सेवा जुहार माने हम ही पैदा होलू से हम चो माय बाप पीला झिला के सेवा कर तो काजे है नी उन भावना चाहिए हम चो सेवा जुहार आए तो कहीं कसम बोलो में नहीं ये बे हमें बाजार मंडी बले जसन की परब बाली मंडाओं से नहीं ये बोले हम चो पारंपरिक हिसाब ने हुन एक प्रकार चो योगा चीज संबंधित आए हुन एक एक महीना छह महीना आसन बोलूं बात ये एक एक महीना 15 दिन आसन नचौगा नचालो में ये सब भी शरीर चे ही योगा चो हिसाब ने हो से ये सारी चीज हुन चो बाद में ये बे मैं हूँ छांडलो लोग मन को मैं इतले ही बोले दे कि कम से कम अगर हम के खिंडिक आगे जुगे दिन जीव तो राया ले बीमार नहीं पड़ तो काजे हम जो काम धंधा के खिंडिक अच्छा से करूं जुगे जुगे मानी मेहनत करूं बेड़ा काड़ा बाटे जाऊं सब बाटे काम करूं दूसर चो भरोसा में नहीं रहूं कोड़की टंगिया बोल लो सन एमन के सब की उपयोग करूं तेवे तो हम चे ये रह दे ये इतलो बोलूं बाती मैं सबके जसन की आमी बाजार मंडी होले सिरा मन के हाक देवाऊ बछवाऊ और अपलान अपलान मतलब जोन जोन हम जो पुरखा पार्टी अलग अलग कुटुंब खानदान में देवधामी आसोत नाम अनासोत उनमन के बचाव उनमन के बाजा मोहरी ने रिवाज का

0: बसाऊसे ते हुन मन बले एवगाची हिसाब आए सीरहा मन के देव बसाऊसे हुन एवगाची है हुन बले कम से कम चार पांच मुद्रा में हुन मन करसो हुन एवगाची संबंधी संगे बले आसे हुन हुन मन नाचुआत बले ये सब जितलो बले देखू से देव धामी मन के बले बनु मन एवगाची हिसाब आए ये बे हम कसन बोलो नि खिंडी खामी बले देखू से और समझो से ये नाले कसन हो ऐसी असन मानते एक बात है देवधामी बल चेगे सी इतरान घंटा तक एक एक घंटा दू दू घंटा हुन मुंडी झुलात बोले हुन बोले एक गोटक सोच तो भी की बात है हुन है कि नहीं एक ही मुद्रा में रोहन बाती कर सोच सारा चीज ये इस तरीके से हम चो सब लगे ये वो गाय बोले अन बोले हम चो उसनी आज गाड़ा फांदू नांगर फांदू जानवर मन के बोले उसनी हुन मन के खवाऊ पियाऊ बोले नदी नाला हुन मन के पोहरा हूं हुन मन हम ही ची नहीं हम ची का ची होगा नहीं करू मन हम चे संगे जितलो उनमें जिंदगी जी सिंह हम चो साधन रहे हुन मन के बोले हम उसनी नहाऊ उन मन के पोहरा हूं हुन बा हाथ माए बोले अच्छा रहो तेब हम साथ साथ के गाय बोलक बोले ऐसा नाम कराऊं लेकिन हम चो लोग उनके नी समझे कि असन कर लेने का हुआ का ये सब चीज योगाची है और ये खूब जीन जीव तो बीती चो यही ये सिस्टम है कल आए
1: तो इधर मंधर राम नाग फिर मैं तुमके पूछना अच्छा। है मतलब सुरता कर तुका जे
2: असन मैं दीदी मन के विशेष कर सागे थे कि घर घर में आगे ढेकी रेली उन ढेकी के आमी काय का जून खिटा लू तो उन ढेकी रलन का है कि आम चो उन ढेकी के रूप में आम चो माय माता मन आम चो भाई बहन मन बहन मन उता धान कांड रहो सन का रिचार बजे उठन बाती जब ले आम तक ढेकी नहीं आई घरे तब ले आम तो सुखियारी हो लिया आम जो शरीर और आम धान कुटा कहा ने उसे साइकिल ने उसे कहा ने उसे मिल ने तो उता बल साइकिल ने जाऊं से हम पैदल नहीं ने कुछ कूता हम पैदल बीती जाता मतलब बंद हो ली उसी प्रकार हम चो जसन की आजकल छाती बड़ा तो समय बला से तो छाती बड़ा फुटतो के फुटे से री बलुनवती सन करी चार बजे उठो तार जंगल ने जाओ तो उन बल हिंडते जाओ ये भी नो आए उन उतार बल जाए तो कोनी साइकिल जान लो मेहर आर मन साइकिल से गुन वसन करी जाए सो उन बल आम शरीर का नुकसानदायक है कसन बल्ले आम चे योगा चुरुम जो मृत्यु जो शक्ति आए उन आम चो खत्म हो उन्हीं प्रकार हम चो आगे मैत्री बल चिचुक जाओ आए टार के बांधो तो टार के बांध उन माती गपलिन बले हाथे छिचोत उन हाथ पाए बल खेले उसी प्रकार हम चो ढेकी आए ढेकी बले धान के उठन बाती सनकारी ढेकिन कुटोत आए गोटक ढेकी के गोटक महिला दा दुई जान कुटोत एक जान जाल उन पर कोटन निनिस का तोर और उनके फिर फिर उनके फिर ये कर तोर उन चो हाथ खेले और ये बात उन ढेकी कुट जो पाए खेले तो हम जो शरीर मजबूत है गठान है आगे का रे हम डूमडा शनकर उठून डूमडा हम ही कहा कि नागर जोपू तो उचन उनता ने हम जो पसीना नीच के और उन सुकून मत पर उतए जमा होए ये बे नो आए उन कपड़ा फुल पेंट पहन लू का बाजार मंडी जाता हूँ सजो जाऊन उन बोला हम चाहिए होगा ने नहीं है तो हम जो शरीर मजबूत उनने नहीं हुए क्योंकि हम कपड़ा पहन ये चीज बन के कर जाऊं से तो ये चीज बन के हम के आगे जो जुना रीति है आगे पारंपरिक जो भूता बहना है उनको अपनाऊ तो हम जो शरीर दका से हम जो दांत नहीं टूटे हम जो केस नहीं पाग सके आगे आगे जुगे लोग मरा हम जो दादी पीढ़ी के लोग आगे कहा केस आज मुंड पाक दीता ये सब भूता मन उदाय रहे ये भी तो हम ये मन के हाजाते जाऊं से ये मन के हाजात जगन हम के फिर उनके अपनाऊ घरे ढेकी बनाऊ और हम जो खिन दुर्बल चलू साइकिल मोटरसाइकिल सब बात है फिर बोले हम उनके संग संग ने हम पैदल पर जाऊ सिखाऊ जाऊं हाट बाजार बोले लगी आ जल हम पैदल जाऊं अब देता है काज हम साइकिल ना ले हम फटफट इंचे जाऊं से ये हम जो शरीर का जे बोलबू देत बीती नो आए हम जो सुखियारी ने हम जो शरीर मजबूत नहीं हो सकता।
1: हाँ ये तो अच्छा गोठा में फिर लोकनाथ नाग बोले से कि फिर आल तुम्हें सुरता करा कि असन आमचो परंपरा ने काय चीज
3: आमचो परंपरा अनुसार मैं ज्यादा करून बाती मचो ये तो युवा साथी मन के मैं तुमके मैं ज्यादा बोलूक चाहे से कि एक चो दिन दुनिया बदल ली और आगे चो दिन दुनिया अलग रहे मैं हुन चीज के बचा तो काजे मैं तुमके ज्यादा करून मैं सांगुक चाहे से कि आगे जसन सियान सजन मन बूता करते रहो बियानी उठून बाती नांगर नेते रहो और जोन बले गांव चो विचार परंपरा अनुसार सोर अनुसार एकता बनाउन बाती गोटक समिति बनावन बाती तालाब खोड़तोर या मुंडा बनातोर या लकड़ी का जे जातोर नांगर गाड़ी बैला में जातोर ये सब चीज बनावन बाती संगालो ने आम चो पुरखा दिन चो जो न काम आए ये बे बले खुबे एगो संगे जोन ये भी करूं से हुन संग हुन बले जुड़ली से ये बले बचाउन संगातो काजे अच्छा होए दे क्योंकि ये चो दिन और आगे चो दिन में खुबे अंतर होली से आगे आमी बुताए करते रहूं कुने आम चो शरीर मजबूत रहे ठोस रहे पतला रहूं के भी पेट नहीं मारते रहे और ये चो लोग के दखा ये भी योग के जोड़ला सो एक में शहर शहर में बसुन बसुन प्रशिक्षण देसो कार्यशाला बनासो लेकिन हम जो प्राचीन में पुरखा लोग जसन आगे बनाऊं संगाला सोत ये चीज के बे निछाड़ून बाती आगे जो सियान सज्जन में जसन करते रहो सुसने करते रहो ने हम जो जोन जोन योग संग जुड़ली से हुन काम बना लो ने बहुत अच्छा रहते और ये तो समय में लोग खूब दिन जीव दे आगे जसन लोग के बाल नहीं पाकते रहे दांत नहीं टूटते रहे खूब दिन जीवते रहो असन हम जो लोग जीवा और ये चीज के बचाऊं हम जो परंपरा के आधार पर चलूं क्योंकि ये बे बले रूढ़िवादी प्रथा हम जो लोग आसे हुन परंपरा अनुसार कहीं बले हमी काम हो बुता हो कुछ भी चीज गाँव चो हो इसे हमी एकता बनाउन बाती सूत्र बनाउन बाती खुबे तकलीफ पसीना निकरौन बाती हम मेहनत करूं से ये बने एगो संग जुड़ली से ये चीज के मैं विशेष करूं मैं युवा साथी मन का जे क्योंकि हम जो समाज चो हम जो गांव चो मूल जड़ वालों ने युवा साथी या उन्हीं का जे मैं युवा साथी मन के ज्यादा आह्वान करे से कि तुमन मन ये जोन आगे चो लोग मेहनत करते रहो ये चीज के परंपरा अनुसार फिर बनाऊन संगावा तेबे आमी खुबे दिन जीवा और खुबे दिन काम करवा और ये तो पीढ़ी के बले अच्छा बनाऊन संगावा
1: ये तो अच्छा गो टूली आमी बदले आम चो परंपरा ने आम चो काम धाम ने काय कैसन काम चीज मन आसे लेकिन योग संगे मेल खाए से मंत्र कई चीज असन बदले है कि बदले ने जसन जसन बदले ने कहा कि समिया एते जाए से उसन उसन बदले आम के काम संगे मिलुक पड़े से कसन बदले कहा कि आजकल कहीं बल काम झपके हो असन मन ने बदले आसे मंत्र कई काम आसन है कि जे क्या मैं जबरदस्ती नहीं करूँ चाहूँ से ये चीज मन क्या के नहीं भूलक रहा है तो तुम तीनों ले और कहीं असन कहीं परंपरा ने कहीं योग संग मेल खा तो भी इतिहास जाले
0: मैं गोट को बोट बोलेंगे हम चु सियान मन संज होले गाय बहिला गोट लोट लेने दावा बनाओ रस्सी के ढेरान बनान प्रति किंदरान किंदरान बसो और गोट गोठिया हाँ। काली का बुता करवाना
1: हाँ।
0: अब सांझ हो मतलब काल चो प्रोग्राम हुन बोसुन बाती हुन बले
1: डोरी
0: और डोरी हाँ। बले हुन बले एगो चेसन करे से का होन
1: हाँ।
0: नाल
1: जाल गाते से
0: नाल बेट मारे से हाँ। आगे तो फुटकी मन बल बनाते वे तो फुटकी नहीं है
1: हाँ।
0: ये फुट बेट मारोत ये दावा कहीं बनावत उदल ना काली चो काम के लेका मन के सांगो दखाना ऐसा हुन एक प्रकार चो हुन बले के योगा संगे रोहन बाती हुन मन के काम के सिखावत मुझे कहने का मतलब यह है कि गांव चो लोग बल जोन बल सुनसो सियान मन और खास कर के युवा मन आजकल खिंडी खामे बल दुखों से गांव पारा बाटले बुन बाती गुटका कहीं ये मन के खादलों में नहीं दांत मात बेले खराब हुआ है
1: हाँ।
0: ये मन की खिंडी छांडू पड़े थे और मैं सियान मन के बले सलाह दें से पीला मन के गलत गलत चीज मन कर सो तो उनके सुधारो तेबे हम चो परंपरा नाले हम चो समाज बाचे दे नाले नहीं बाचे तो ये बले आए योगा संघ ही सब चीज आए
2: तो मैं गोटो शुरू तक कर ले हम जो दादा कि हम जो जसन सेवा और बेटिया बोलते रहो
0: हाँ।
2: तो सेवा और बेटिया तो मैता ना जी बेटिया आए ना बेटिया ना घर आना नाल बेटिया नाम जो तरी बनात रहा है नाल मुंडा बनात रहा है उन आठ दिन पहले सांगे तो सांग तो जान उन मन तो शरीर जो है जितना बोल न्योता दिलू नहीं उन मन आप लोग शरीर मजबूत कर तो काजे तैयारी करो फलनाता ने बेटिया नागर नेत रहा है फलनाता ने बेटिया ने बारी बांध रहा है बेड़ा बनात रहा है ये बोल एक सामूहिक है ये योग है परंपरा पारंपरिक योग तो उता जानू दिन भर है दिन भर जाऊंगा तू तो सेवा बेटिया दे उन बोल एकदम निष्पक्ष रूप से दे बीसात बीती नो आई काई नो आए उन सेवा बेटिया संगे उन योग बोले आगे जुड़ ली थी लेकिन आजकल उन सेवा बेटे नहीं आए आमी काय करूं सुन संग डोजर आनू से पारी बांधू से है उता उनी ड्राइवर है उनी मेहनत करे तो आराम नहीं आए उता आए दफ्तरों से हाँ एक जानकर उनका ने हम तो सामूहिक एक प्रकार चो योग रहे तू ने योग के आम उन परंपरा के बल गांव चो बनान बाती है हम च लेखा मन जसन की नागदादा सांगला की युवा मन के युवा मन बले विरुण मत सनकारी है चार बजे उठन बाती गोड़ तरीत बनान दका आम शरीर मजबूत क्यों नहीं हुए मैं ये गोड की मैं तुम च युवा शक्ति मन के मैं सांग तो काज मैं ये इता वार्ता में आसे
1: तो हाजी आमी इतलो अच्छा बोले ने हम चो ग्रामीण परंपरा हिसाब ने जोन काम धाम हुए से आरु आजकल जोन स्वस्थ रतु का जे योग बोल सो तो ये चो जोन मेल आए हम चो काम धाम ने कसन मेल खाए से आरु हम जसन आमी नी जान तो कारण ने उन काम की नहीं करूं से भूतों से आरु कई प्रकार चो बीमारी से मारी हम चो देह पाए के जोमटे से तो आज ही चो परिचर्चा ने यही रही कि आमी आमचो काम धाम ने योग कसन जोड़ ली से
0: ताकि निछाड़
1: आमचो काम धाम की निछाड़
2: अरे तो ने आम शरीर कसन
1: मजबूत रोकला से
2: पुराना पुराना आमचे योग ने
1: हां
3: पुराना रीति रिवाज
2: ने परंपरा ने जोड़ ली
1: इतलो अच्छा आमी गोड बात आज बोलियो आमचो रेडियो सुन तो गांवकारी भाई भी मन समझ दे जान दे और फिर आमचो आगे चो परंपरा बीती जोन काम धाम आए उनके बल्ले नहीं भुलक दे
2: नहीं भुलक दे यार भुलक तर बल्ले
1: ना अलते ना बल्दे मोरे दादा मंदर नाग आरु लोकनाथ नाग तीनों को जुहार
3: जुहार जुहार जुहार
4: अभी आप सुन रहे थे हाल में बोली में परिचर्चा ग्रामीण परंपरा और योग प्रतिभागी थे श्री बलदेव मोरे श्री लोकनाथ नाग और श्री मंथर राम नाग संचालक थे बलबीर सिंह कच्छ आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है आइए सुनते हैं कमल साय और साथियों का गाया ये हलबे लोकगीत

0: आप सुन रहे थे हल्बी गीत, कलाकार थे कमल साय और साथी आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है गोरा और काला।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म हकीकत से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आजमी का गीत है, सुरों में पिरोया है मदन मोहन ने।

आज हम आपको सुना रहे हैं फिल्म गहरी चाल से, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में यह गीत है। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत। शब्द भरत व्यास के हैं, संगीतबद्ध किया है वसंत देसाई ने। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।

0: इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर

0: ब्लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।